0: خیریه زرا؟ یه کمرشل تو سن لی.
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays.
9: Foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: adalah It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinentendale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: This is a public service announcement.
11: Everybody. The station.
12: That plays
13: foot-tapping music.
14: 97.1 FM,
15: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
16: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
8: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
9: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
8: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
9: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
8: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
9: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
8: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
9: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
8: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
9: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
8: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
10: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97।
2: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
6: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
12: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
13: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, xlcnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन
5: दैट प्लेज
6: फुट टैपिंग म्यूजिक.
7: फजान 97.1 एफएम,
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 एफएम, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 एफएम एंड डैप.
9: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
7: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
6: तक। फजा 97.1 FM, हर पल आपके साथ साथ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: This is a public service announcement.
11: Everybody. The station.
12: That plays
13: foot tapping music.
14: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
15: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Back to back music.

जी तो लिस्टर वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था कह रहा हूं उसे खुश आमदीद कहते हुए जी। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, ये स्वागत है जनाब उन समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे। अलावा जी आपको बताते चलेंगे ना, आप जान सकते हैं हमारी वेबसाइट के हवाले से, हमारी बाकी ट्रांसमिशन के हवाले से, कौन से इवेंट्स आ रहे हैं उसके हवाले से भी मैं बार बार आपको रिमाइंड कराई देता हूँ। वेबसाइट इज radiofza.co.uk और लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप सुनना डेफिनेटली सुनना चाहते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पर सुनना चाहते हैं तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, FM और डैप के अलावा। डैप पे आप हमें फजा के नाम से सर्च करेंगे, FM 97.1 है। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ऐप आप कैसे डाउनलोड करेंगे। जनाब आप जाएंगे गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो 97.1 FM ऑफिशियल सर्च बार में, और उसके बाद एक जनाब जबरदस्त पर्पल कलर में बैकग्राउंड के साथ, पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ तो फजा लिखा आपके सामने आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए और फिर जब आप क्लिक करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी सुनाती हुई नजर। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। तो जनाब ये सारी वो चीजें हैं जो आपके सामने रखी और एक अनाउंसमेंट भी आपके साथ शेयर की देते हैं। डेफिनेटली जैसा कि कुछ लोग तो ये जानते हैं कि एक्सेलसियर नवाब में इस बार 14 अगस्त को जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्ती और रंगारंग तकरीब मुनक़द होने जा रही है, जिसमें नाब सनम मारवी शामिल होंगी। पाकिस्तान की बहुत बड़ी सूफी सिंगर हैं, बेसिकली आ रही हैं तशरीफ लेके हमारे नॉटिंघम में, और उसके साथ होंगे जुकी नबील हेस जी, ये भी बड़े हमारे यूके के स्पेशली बड़े नामवर सिंगर्स हैं। और इनकी क्या बात है इनकी क्राउड की और क्या सिचुएशन है, तो जनाब इन्जॉय कीजिए ज़बरदस्त इन सातों को। लेकिन आपने क्या करना है कि अपने सबसे पहले जाना है excelsiynawab.co.uk पे, वहाँ जाके बार कोड स्कैन कीजिए, अपनी टिकट बुक कीजिए। जनाब मीट एंड ग्रीट के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, इसलिए वो जो टिकट्स हैं VIP टिकट्स बहुत ज़्यादा लेस रह चुकी हैं। आपसे गुजारिश है कि जल्दी कीजिए। बिल्कुल जनाब मीडिया पार्टनर है रेडियो फजा 97.1 FM।

जी लिसनर्स, इसके अलावा जनाब आपको ये बता दें कि आज की जो कोट ऑफ द डे है वो शुरू में मैंने एक बार दोहराई थी, लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक सो अगर आप लोग बेहतर समझें तो आई थिंक हमें वेदर रिपोर्ट भी डिस्कस कर लेनी चाहिए। वेदर काफ़ी जनाब खुशनुमा हो चुका है, काफ़ी अर्से की जो गर्मी की एक लहर आई हुई थी हमारे नॉटिंगहमशायर में या पूरे यूके में ऑलमोस्ट, तो वो जनाब हल्की सी टूटी है और हत्तुल इम्कान चांसेस हैं कि कल 21 डिग्री और उसके बाद 19 डिग्री तक टिल थर्सडे और फ्राइडे जो अपकमिंग है वो आरस तक ये इतना ज़ोर हो जाएगा, यानी गर्मी काफ़ी हद तक टूट जाएगी। और इस वक्त आपको ये बताते चलें कि फ़िज़ा में ह्यूमिडिटी का लेवल है जी 20%। शाम को सनशाइन आपको दोबारा मिल जाएगी 6 बजे से ऑनवर्ड्स, जब तक ग़ुरूब नहीं होता, सूरज यानी सनराइज नहीं होता। तो जनाब ये सारी सिचुएशंस है और ये है जनाब गुड मॉर्निंग नॉटिंगहम। आपको ये बताना था कि जनाब आज की जो कोट है वो कौन सी है। कोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जनाब, ये बेसिकली ये जो कोट है ये शेख सादी से रिलेट की जाती है, उनकी हिकायात सादी से रिलेट की जाती है, लेकिन इस कोट को बहुत सारे जो बड़े फिलोसफर्स हैं उन्होंने भी कॉपी किया है। कहते हैं कि हर इंसान में खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, फ़र्क इतना है कि तराशने वाले को खूबी जबकि कुरेदने वाले को खामी नजर आती है। ये जरा कोट ऑफ द डे है। इस कोट ऑफ द डे के हवाले से आपकी कोई विशेष टिप्पणी, आपकी कोई राय, आपके कोई विचार अवेलेबल है ना, डेफिनेटली आपके पास होंगे तो फिर रब्ता कीजिए मेरे साथ 0115 7100971 पे। लाइव कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ताकि आप शामिल हो जाए मेरे साथ मेरे लाइव प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग नॉटिंगहम।

जिन नेक्स्ट सेगमेंट हमारा होगा जनाब पर्सनैलिटी ऑफ अ डे का, डेफिनेटली शेयर करेंगे आपके साथ, गपशप भी हमारे साथ रहे, साथ रहे कि अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो मुझे दीजिए मैं ताकि आगे पहुंचा सकूं लोगों को जो सुन रहे 97.1 FM को। एंजॉय कीजिए खूबसूरत ट्रैक्स। ये ट्रैक चलेंगे ना, थोड़े से आप स्वस्थ हो जाएंगे जो लोग ड्राइव करते हुए, जिसमें आपसे गुजारिश है कि ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट एंड डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: The radio that keeps you moving.

0: जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आपका मेजबान आसिफ खान आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए जनाब थैंक्स अ लॉट। खूबसूरत से ट्रैक्स आप लोग इंजॉय कर रहे थे, दरमियान में हाई हुई थी कमर्शियल ब्रेक के उस पर दोबारा आपके साथ आपका मेजबान गुड मॉर्निंग नॉटिंघम कहते हुए एक बार फिर से तो समझाएं सुन लें तलाएं कैसे आप सब लोग के अहवाल वर्तनम सुगम सुगम मानो कैम से बोन जोर की हाल चाल मेरा तोड़ा। तो जनाब मैं तो फिट फाट हूँ, अगर आप भी फिट फाट हैं तो फिर 01157100971 इस नंबर पर रब्ता कीजिए और बताइए कि क्या ख्यालात हैं, क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं। एक बार फिर से जनाब थोड़ी सी विशेष टिप्पणी अपनी मैं शेयर किए देता हूँ और थोड़ी सी जनाब मैं ये भी बताता हूँ कि मेरी सोच की धारा किस समत बहती है। जो कोट ऑफ द डे हमारी आज के दिन है वो है जनाब हर इंसान में खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि तराशने वाले को खूबी नज़र आती है जबकि कुरेदने वाले को खामी। अब जनाब हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इशू स्पेशल जो साउथ एशियन कम्युनिटी में मनाया जाता है बकायदे तौर पे, ये जनाब हम लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं लोगों को, कभी कभी डिस्कस भी करते हैं और कभी इस लेवल पे इस हद तक चले जाते हैं हम कि हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं और गपशप करने के, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम किसी की खामियों को कूरे दें, हम किसी खामियों को थोड़ा सा हाईलाइट करें ताकि क्या तस्कीन मिलती है नोबॉडी नोज। लेकिन जितनी बिजी लाइफ हमारे नॉटिंघम शहर की है, यूके की है, इंग्लैंड की, जिस जगह पे भी मतलब आप इस देश के प्रदेश में, इस प्रदेश के देश में आप पहुंचे हैं कहीं से भी, तो यहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ का टाइम नहीं मिलता। लेकिन हमारे जो होमलैंड है, जो हमारी घरेलू जिंदगी है, यानी कोई पाकिस्तान से है, कोई इंडिया से है, कोई श्रीलंका, कोई बांग्लादेश, कोई केरला से, इस तमाम सिनेरियो में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम लोग वहाँ जब होते हैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इवन कोई जो यहाँ के रहने वाले, जिस तरह हम अक्सर अपने होम टाउन में जाते हैं, होमलैंड में जाते हैं और वहाँ पे जाके हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि खामियाँ कुरे दी जा सकें। अगर आज हम सियाने ये कहते हैं और सियाना कहने के बाद आप मेरी तरफ देखते हैं, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा है, लेकिन सियाने ये कहते हैं कि जनाब अगर आप लोगों की खूबियाँ डिस्कस करना शुरू करते हैं तो एक ओरा चेंज हो जाता है। हर इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, इन्वायरमेंट मैनेज होता है, इन्वायरमेंट बड़े खूबसूरत लोगों के साथ मैनेज होता है और बड़े प्यारे लोगों के साथ मैनेज होता है। लेकिन जो खूबसूरत और प्यारे लोग होते हैं वो दिल के अच्छे भी होते हैं और दिल के साथ साथ वो दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। जी बिल्कुल, इसमें स्टार्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लक भी इंसान की साथ साथ आती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप खूबियाँ डिस्कस करना शुरू करते हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी, हर इंसान की पर्सनैलिटी के गिर्द एक ओरा होता है, 7 सर्कल्स होते हैं जिसमें 3 खूबियों के, 3 खामियों के और 1 न्यूट्रल होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो न्यूट्रल सर्कल पे आकर रुक जाते हैं। और वो पंजाबी के एक ज़बरदस्त से मुहावरा है, मुहावरा नहीं बल्कि खूबसूरत सा कलाम है कि एक नुकते ते गल मुकदी है, बड़ा फेमस कलाम है, आबदा परवीन ने भी इसको गाया है। वो नुक्ता कौन सा जामीन, वो नुक्ता आपकी पर्सनैलिटी का, वो ओरे का वो पॉइंट है जिस पर आप न्यूट्रल आके खड़े होते हैं। जब आप लोगों की खूबियाँ डिस्कस करना शुरू करेंगे तो फिर आपकी ज़ात में एक खुद निखार आता है, और जब निखार इंसान की ज़ात में आता है तो फिर इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा रहता है कि अब जो मैंने बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की बात करनी है। इसी तरह हम एक सिविलाइज्ड, एक खूबसूरत कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं, जिसकी कोशिश 97.1 FM हमेशा करता रहता है। हमारे जितने भी कम्युनिटी वर्क्स हैं, जितने भी हमारे इवेंट्स हैं और जितनी भी हमारी पॉडकास्ट और उसके अलावा जितनी भी हमारी सोशल मीडिया की वर्किंग है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी वर्क बेस पे है, ताकि हम साउथ एशियन कम्युनिटीज़ जब हम यहाँ के रहने वालों में घुल मिल जाएँ तो उनको अंदाज़ा हो कि यार हम अपने जो विरासत है, हमारी अपनी जो सकाफत है, हम जो अपने अग्यार से हमने कोई चीज़ नहीं ली, अपने आबाओ अजदाद से हमने जो विरासत में एक तहजीब मिली है वो लोगों की खूबियाँ बयान करना है। बिल्कुल जनाब, अगर आप ये कोशिश करना शुरू करें इंक्लूडिंग माई सेल्फ तो फिर ये चीज़ भी जहन में रखें कि हमारे पास जब भी डिस्कशन में आएंगी तो मोस्टली खूबियाँ आएंगी, तो फिर आपको हर इंसान खूबसूरत लगेगा, हर इंसान प्यारा भी लगेगा और उसके साथ साथ हर इंसान का एक डिफरेंट ओरा आपके सामने आ जाएगा। और वो ओरा क्या होगा कि फिर आप डायमंड की तरह हो जाएंगे, फिर हर तरफ से आप रोशनी देंगे, हर तरफ से आप क्रिस्टल क्लियर होंगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका रखाव, आपका लोगों से बातचीत करना, उसके बाद लोगों के साथ मिलना जुलना, आपका چلنا ایون ایک مثال بن جاتا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں انسان کے پاس آتی ہیں تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے. اسی طرح جناب ہمارے جتنے بھی لیجنڈس ہیں, جو پرسنالٹی آف دا ڈے آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے, بڑی زبردست پرسنالٹی ہے جناب علی بابا .com اس کے جناب جو بیسیکلی سی او ہیں اور اس کے جو بانی ہیں جنہوں نے اس کو بنایا جناب, بالکل میں بات کر رہا ہوں جیک ما کی, چائنیز بلینئر. یہ بندہ کیا تھا تھوڑا سا میں تعارف کرائے دیتا ہوں کہ جناب چائنا میں جو گورے آتے تھے نا, مطلب جو یہاں سے یا یو کے سے یا یو ایس اے سے یورپ سے لوگ گھومنے پھرنے جاتے تھے, جیسے چائنا میں جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ انڈسٹریل ہو یا سیاحتی پروگرام, تو یہ لڑکا وہاں پہ گائیڈ ہوا کرتا تھا. تو جناب یہ چھوٹی سی موٹیویشنل سکسیس سٹوری ہے, سٹوری کو انجوائے کیجئے, سنیے اور اس کو اپنے دماغ کے ساتھ ساتھ دل میں بھی جگہ دیجئے, اور جب آپ کو یہ جگہ مل جائے تو پھر کوشش کیجئے گا کہ ان کی خوبیاں جیسے ہمارے سامنے آئیں گی, ان کی کچھ ایسی وشیش ٹپنی ہیں, کچھ ایسی باتیں ہیں, کچھ ایسے وچار ہیں جو بڑے دیکھنے اور سننے کے قابل ہیں. سنیے جناب زبردست سیگمنٹ پرسنالٹی آف دا ڈے, پرسنالٹی آف دا ڈے کے اس پر رہتی ہے. آپ سے پھر سے ملاقات, اسٹے ٹیون اینڈ یور ہوسٹ ول بی رائٹ بیک.
1: China with a net worth of $37.5 billion, but he started his journey working for $12 per month. So if you think you have it rough, just take a look at Jack Ma's success story. It will motivate you and inspire you to never give up. Because you just can't beat the person who never gives up. Jack Ma was born in China and comes from a humble family. He always wanted to learn English, and as a kid, he spent his early mornings riding 70 miles on his bicycle for 9 years, giving English tours to foreigners for free. It was his way of practicing and learning English. In one of those tours, he met a foreign girl who gave him the nickname Jack because his Chinese name was hard to spell for her. Even from his early childhood, he faced hard times. He faced so many failures and rejections. Jack Ma failed in his primary school examinations 2 times. He failed 3 times during his middle school exams. He failed 2 times before he was accepted by what was considered the worst university in his city. He even applied to Harvard University 10 times and got rejected every single time. But that's not all. This was only during his education. Jack Ma was never a great student. He was always terrible at math, and actually he still is today. He failed in several subjects in school, but he possessed some kind of awareness that convinced him that being at the top of the class doesn't mean that you're intelligent or that you will ever be successful. He knew that there is more. Jack tried and failed to get a job after applying to them 30 times. When KFC came to China, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only guy who wasn't. He was also one of the 5 people who applied for a job in police force and was the only one getting rejected after being told, "No, you're no good." But when he was asked about his rejections, he said, "Well, I think we have to get used to it. We are not that good." After spending 3 years to get into a university, graduating with a bachelor's degree in English, he started working as an English teacher with a pay of only $12 per month. But he was never discouraged by any of this. The very important thing you should have is patience. And he did. In 1995, he had his first encounter with the internet when he went to US with his friends, and he was fascinated. He saw the lack of Chinese webs as an amazing business opportunity for him. So with no experience in coding or in computers, he founded an internet company for China. Unfortunately, his first 2 companies failed to succeed. But for the boy who failed his whole life, this was a starting point on his journey to success. So 4 years later, he gathered 17 of his friends in his apartment and convinced them to invest in his vision to create an online marketplace he called Alibaba. The main idea was that the site will allow exporters to post product listings that customers could buy directly. But the beginnings were really hard. In the beginning, I just wanted to survive. For the first 3 years, we made 0 revenue. But soon, the service started to attract members and investors from all over the world. And the company has raised $5 million from Goldman Sachs and $20 million from SoftBank. Since then, Alibaba has become the biggest online marketplace in China and generates more profit than Amazon and eBay combined, and has turned Jack Ma into one of the richest people in the world. So don't let your humble beginnings, your level of education, your lack of resources stop you from pursuing your dreams. Because your success is determined by the amount of effort you put in, and most important, by not giving up when failure hits you, and it will hit you. If you don't give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure, because if there is a man who knows the meaning of failure, it is Jack Ma. Before reaching his 30s, he felt like a failure all the time. He felt like a loser, but that didn't discourage him. On the contrary, he said, "I know this is a training course for me." He looked at every challenge in his life like an opportunity. Jack Ma never thought in his life that he will be a businessman. He never thought he would be a teacher. And most certainly, he never thought he would become one of the richest people in the world. But at some point in his life, he was all of those people. On the opposite, there were other things he wanted to do, like he wanted to be a policeman and he wanted to work at KFC, but ended being the only one who got rejected. And it looks like those rejections and failures were for his own good. So don't be afraid of your failures. Once in your life, try something, work hard at something, try to change. Nothing bad can happen. And remember, never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. So, what's your story?

जी तो लिसन वेलकम बैक, खूबसूरत ट्रैक्स हमारे साथ साथ चलते रहेंगे, घबराइएगा मत, क्योंकि एक जबरदस्त सी जनाब हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद थी और जो सेगमेंट था हमारा जनाब वो था कि पर्सनैलिटी ऑफ द डे, जैक मा कैसे अपने आप को परवान चढ़ाते हैं और कैसे इतनी बड़ी फर्म को ऑन करते हैं। और चाइना डेफिनेटली आप लोग जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की जो 95% कम्युनिटी है या इकोनॉमी है या आप इंडस्ट्रियल एरिया देख लें तो बिलोंग्स टू चाइना। इवन जो बड़े बड़े ब्रांड हैं सब चाइना में शामिल हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं हर तरफ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे हर एक बंदे का कोई ना कोई करैक्टर, कोई ना कोई रोल रहता है। ऐसे ही रोल जनाब जैक मा का है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की मेहनत भी की और ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शौक इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश में बात करने का। तो जनाब ये जो कड़ी होती है, ये जो क्राइटेरिया होते हैं इंसान को, मेहनत के साथ लगन भी देता है, लगन के साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पॉजिटिव होप देता है, जिसकी हम शुरू से प्रोग्राम के शुरू से बात कर रहे हैं। तो ये जनाब आज के दिन का मोटो है, आज के दिन के हवाले से इसको इसी तरह प्लान कीजिए और जुड़े रहिए रेडियो 97.1 FM के साथ। अभी आपको अपने मेज़बान में नासर खान को देनी होगी इजाज़त, क्योंकि टाइम जनाब वक्त का थोड़ा सा बंदिश भी रहती है और थोड़ा सा कैद भी हमारे पास रहता है। ठीक कोई दो मिनट रह चुके हैं मेरे प्रोग्राम के साउट साइन आउट होने में, लेकिन क्योंकि आपने ट्रैक्स भी इंजॉय करने हैं इसलिए आपका मेज़बान नासर खान इज साइनिंग आउट नाउ फ्रॉम गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। मिलेंगे कल जनाब जुमातुल मुबारक के दिन ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। अगर आपकी कोई स्पेशल फरमाइश या कोई स्पेशल चीज़ है, क्योंकि कल हमारे साथ मोस्टली सनाफान मुस्तफ़ा गेस्ट भी आएंगे, तो जहाँ आप प्राप्त कर सकते हैं 01157100971। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM, स्टे एनर्जेटिक, स्टे मोटिवेटेड एंड एंजॉय योर डे। हियर वी गो, गुड बाय गुड बाय गुड बाय।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
0: The station with the best music. Best music.
10: I love the music.
11: Best music.
12: 97.1 FM.
13: Like a night full of stars. Like a dream that comes true. Like fragrance of flowers. Like a cup full of coffee. Like a heart full of love. We want you like this as a part of
14: Fazana 97.1 FM.

Assalamu alaikum, namaste, satsyakar. Hello, hello, hello. A very beautiful, exciting and breezy morning सभी listeners के लिए जो कि इस वक्त मुझे सुन रहे हैं. तो listeners, सभी listeners को रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैप के लाइव स्टूडियो से वेलकम करती हूँ. मैं हूँ आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त, वन एंड ओनली RJ ज़ैनब फातिमा. और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो डीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे. तो लिसनर्स, जैसा कि है आप सभी को मालूम कि रेडियो फजा 97.1 FM ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ होती है मेरी और आपकी कुछ कम्युनिकेशन, और फिर मिलता है एंटरटेनमेंट का डोज. सो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेके चलें हम और आप अब से लेके ठीक दो घंटे तक, यानी ठीक 10 बजे से लेकर ठीक 12 बजे तक हम और आप रहते हैं साथ साथ. सो पूरी कोशिश होती है कि हम मिलकर बनाएं आपके आज के इस दिन को खूबसूरत, मीनिंगफुल और साथ ही साथ प्रोडक्टिव. शो में शामिल करें कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं, जिनके मुतालिक आप डिस्कस करना चाहते हैं, और साथ ही साथ हो बहुत सारी पॉजिटिविटी की बातें. सो डियर लिसनर्स, आज के इस शो में भी हमेशा की तरह सुनाऊंगी कुछ आपको मैं अपनी दास्तान और अपनी रियल लाइफ से जुड़ी डिफरेंट तरह की सिचुएशंस प्लस एग्जांपल, और साथ ही साथ सुनी जाएगी आपकी दास्तान. सो अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारे इस शो का हिस्सा बन जाएं डीवा डायलॉग के इस सफ़र का, सो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ईजी सा है. आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, सिंपली बस इतना करना होगा, आपको जाना होगा अपने फ़ोन पर और वहां जाके डायल करना होगा 01157100971. जी हाँ, तो ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यानी ये वो नंबर है जिसके ज़रिए से आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं. सो इस नंबर के ज़रिए से ना सिर्फ आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, बल्कि आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं, किन मौजूदात पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, और साथ ही साथ कि आपको किस तरह का म्यूज़िक है पसंद. सो डियर लिसनर्स, पूरी कोशिश की जाएगी कि जो आप सुनना चाहते हैं वही डीवा डायलॉग का हिस्सा बनाया जाए, और साथ ही साथ जिस तरह का म्यूज़िक आपको पसंद है वही शो में प्ले किया जाए. इसके अलावा आप हमें इस समय के थ्रू ये भी बता सकते हैं कि आप के आज के दिन के हवाले से क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या आप अभी तक उठ चुके हैं, या फिर आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं. सो अगर आपको चाहिए कोई भी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस, या आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई एक अच्छा न्यू क्रिएटिव आइडिया दूँ आज के दिन के हवाले से कि किस तरह से आप आज के दिन को बना सकते हैं इंटरेस्टिंग प्लस प्रोडक्टिव, सो इसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो डियर लिसनर्स, इंतज़ार किस बात का है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. अभी जाइए जाके मुझे कोई खूबसूरत सा प्यारा सा पैगाम लिखकर भेज दीजिए जिससे मैं बनाऊँ शो का हिस्सा. और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह का म्यूज़िक सुनना है, और अगर आप अपने किसी चाहने वाले को कोई अच्छा सा प्यारा सा गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं. सो अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप हमें, यानी रेडियो फजा 97.1 FM को ट्यून कर सकते हैं. सो www.radiofaza.com.uk ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा. सो जितने भी इंफॉर्मेशन है अबाउट रेडियो फजा 97.1 FM वो आप सभी को मिल जाएगी इस वेबसाइट के थ्रू, और साथ ही साथ हमारे आने वाले तमाम तरह न्यू शोज़ की अपडेट भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी. सो अब अगर बात कर लें कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस शो में है आने वाला, सो उसकी भी बल्कि हर तरह की इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर मौजूद है. अगर आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, करना आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, बल्कि सिंपली आपको जाना है एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहाँ जाके सर्च करना है आपने रेडियो फजा 97.1 FM,
और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। अब सब बात करते हैं आज के दिन के हवाले से। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। हमारी जितनी भी डिवाइस हैं और हमारे जितने भी मेल लिसनर्स हैं अभी तक तो उठ चुके होंगे, दिन का आगाज़ कर लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी हैं आप थोड़ी सी सुस्ती में या काहिली में मुब्तिला, सो इट्स द टाइम, इट्स द मोमेंट, सुस्ती को करें साइड पे और बिस्तर को छोड़ दीजिए। उठकर घर से बाहर निकलें, बालकनी में आएं और एक कॉफ़ी के मग के साथ बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा इंजॉय करें। वैसे कहा जाता है कि सुबह की मॉर्निंग कॉफ़ी या फिर मॉर्निंग टी, ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ हम अपने पूरे दिन के हवाले से एक स्केच तैयार कर लेते हैं माइंड में कि अच्छा आज का दिन हो चुका है स्टार्ट, सो आज के दिन हमने क्या क्या काम करना है, किस तरह से ये पूरा दिन गुजरेगा। तो ये जो 5 से 6 सेकंड्स होते हैं ये, इसमें हम पूरे दिन का एक हाका तैयार कर लेते हैं। और वेल, जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो फिर क्या करते हैं कि अपने पूरे दिन को इसी हाके के अगेंस्ट, सॉरी, गिर्द चलाते हैं। सो अगर आपने भी आज के दिन के हवाले से अभी तक नहीं कोई भी प्लानिंग की, सो जल्दी से प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी उन्हीं लोगों की कामयाब होती है जो अपने ज़िंदगी को एक पैटर्न के थ्रू, एक प्लानिंग के थ्रू चलाते हैं। और वो हमारे जितने भी लिसनर जो इस वक्त तक उठ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं, सो और निकलने लगे हैं अपने ऑफिस, यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल कॉलेजेस की तरफ, सो उन सभी लिसनर्स के लिए तो सबसे पहले ये कहूँगी कि बी केयरफुल जब भी आप ड्राइव कर रहे हों। सो कोशिश किया करें कि आपका पूरा फोकस ड्राइविंग की तरफ हो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कीमती है और बाज़ुकात हमारी थोड़ी सी तेज़ी, थोड़ी सी जल्दबाजी बन सकती है एक बहुत बड़ा नुकसान। सो खुद को हमने नुकसान से बचाना है, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हम बिल्कुल आराम से, एहतियात से फोकस करके ड्राइव करें। सो डियर लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सफ़र बन जाए और भी ज़्यादा खूबसूरत और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचें एक खूबसूरत सी आवाज़ ट्यून करते हुए, खूबसूरत आवाज़ मतलब मेरी आवाज़, सो इसके लिए आप फजा डैप के थ्रू हमें ट्यून कर सकते हैं। सो डियर लिसनर्स, अगर आप है रास्ते में या पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो मुझे सुनते सुनते जाइए ताकि आपका जो ये दिन है मज़ीद और भी ज़्यादा खूबसूरत और प्रोडक्टिव बन जाए। सो डियर लिसनर्स, ये तो हो गया एक जोक, अपार्ट फ्रॉम अ जोक अब थोड़ी सी सीरियस डिस्कशन कर लेते हैं। सो लिसनर्स, डीवा डायलॉग में हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ कि एक खूबसूरत से अच्छे से दिन का आगाज किस तरह से होता है, जब हम एक अच्छा हेल्दी मील लेते हैं। सो मील क्यों ज़रूरी होता है? मील इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इतना बड़ा दिन जो हमने गुजारना है उसके लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी एक अच्छे हेल्दी ब्रेकफास्ट से। सो आज भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपने ब्रेकफास्ट कर दिया है स्किप तो बिल्कुल भी मत किया करें स्किप, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पूरे दिन को चलाने के लिए। सो ये बात होगी आपकी बॉडी की नीड्स की, बॉडी की एनर्जी की। अब जब बात करते हैं माइंड की एंड सोल की, सो माइंड और सोल को भी ज़रूरत होती है एनर्जी की, रिफ्रेश होने की, एक रीस्टार्ट बटन की। सो अब हम ज़रा महंगी महंगी थेरेपीज की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाते। सो अगर बात की जाए थेरेपीज की तो म्यूज़िक इट्सेल्फ, इट्स अ वेरी चीपेस्ट थेरेपी। सो आइए इस थेरेपी को इन्जॉय करते हैं और अपने माइंड को कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रेश। सो शो के आगाज़ में प्ले करते हुए एक खूबसूरत सा रोमांटिक सा सॉन्ग, आई होप आपको ये गाना बहुत अच्छा लगेगा और इसको सुनने के बाद काफ़ी हद तक आपका मूड हो जाएगा अच्छा। सो जी लिसनर्स, डीवा डायलॉग में शामिल करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स, डिफरेंट तरह के मौजूदात पे बात करेंगे और मज़े मज़े के सेगमेंट्स भी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सुनते हैं ये ट्रैक, ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात एंड देन स्टार्ट करते हैं आज का बाकायदा शो।

तो लिसनर्स, इस वक्त शो में वक्त हुआ है एक एडिट कमर्शियल ब्रेक का, सो चलते हैं आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी डीवा डायलॉग में इस कमर्शियल ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए आप ये खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय करें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: से तो लिसनर्स आप सभी ने देखा होगा कि आजकल जिंदगी कितनी फास्ट हो चुकी है, सो इस तेज तरीन दौर में हम अक्सर अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में उलझा देते हैं और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है हम उस एक चीज़ को भूल जाते हैं और आसपास इर्द गिर्द के सोसाइटी के प्रेशर में आ जाते हैं। सो आज के इस मोटिवेशन सेगमेंट में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दो ऐसे ही बहुत डीप और लाइफ चेंजिंग कोट्स जो कि ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देंगे बल्कि ज़िंदगी में कोई ना कोई पॉजिटिविटी और मुस्बित असरात मरतब करेंगे। सो डियर लिसनर, सिट बैक, रिलैक्स करें और आइए चलते हैं आज के पहले कोट की जानिब। सो हमारा आज का फर्स्ट कोट है द पावर ऑफ बिलीविंग योरसेल्फ। आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी मुश्किल रास्ते पर चल रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत महसूस होने लगती है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो काम हम रूटीन में कर रहे होते हैं वो हमें मालूम होता है कि किस तरह से करनी है, लेकिन जब हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं सो मोस्टली हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता, चीज़ें पता नहीं चल रही होती। हम चाहते हैं कि कोई आए और हमें इस चीज़ का यकीन दिलाए कि तुम ये कर सकते हो, किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से एंड करना है, क्योंकि कहा जाता है कि जब एक रास्ता स्टार्ट हो जाता है सो हमें मालूम होता है कि अब ये रास्ता स्टार्ट है और आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं जाकर ये रुक जाएगा, लेकिन जब कभी ज़िंदगी में आपने स्टार्ट करना होता है कोई नया रास्ता, कोई नया पहलू, सो दिल करता है कि कोई आकर हमें थोड़ी सी इमोशनल सपोर्ट दे। लेकिन इस बारे में एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस फिलोसोफर ने कहा है। सो द फर्स्ट कोट सेज द बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री इज़ नेवर अफ्रेड ऑफ द ब्रांच ब्रेकिंग बिकॉज हर ट्रुथ इज नॉट इन द ब्रांच बट इन हर ओन विंग्स। सो इस छोटी सी एग्जाम्पल में कितनी गहरी बात छुपी हुई है, आइए ज़रा मिलकर उसे डिस्क्राइब करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी खुशी, अपनी सक्सेस और अपने भरोसे की बुनियाद दूसरों पर रख लेते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक लोग हमारे साथ देंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जब वो सहारा हमें छोड़ देता है तो हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, तन्हा महसूस करने लगते हैं और फिर ऐसा लगने लगता है कि जो सफ़र हमने इस शख्स के साथ स्टार्ट किया था अब अगर ये नहीं है तो ये सफ़र भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। लेकिन लिसनर्स, दूसरों को सहारा हमेशा टेम्परेरी होता है, अपनी ताकत, अपने अंदर की एबिलिटी और खुद पर यकीन रखने से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। सो आप खुद पर ट्रस्ट करना सीखें, जब आपको अपने आप पर इतना भरोसा होगा तो चाहे किसी भी तरह के सरकमस्टांसेस हो, कितने ही खराब क्यों ना हो, आप कभी नहीं गिरेंगे। सो ट्रस्ट योर ओन विंग्स। वेल लिसनर्स, कितनी प्यारी से कितनी खूबसूरत सी बात थी हमारे फर्स्ट कोट में, एंड आई होप कि आपको ये कोट बहुत अच्छा लगा होगा। सो कोट सिंपल लफ्जों में तो यही कहता है कि कभी भी किसी पर डिपेंड मत करो और हमेशा खुद को इस चीज़ के लिए रेडी रखो कि कोई भी रिश्ता है, कोई भी अपना है, ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर वो आपको तनहा छोड़ जाएगा, परमानेंट कुछ भी नहीं होता। सो अगर आप खुद से प्यार करेंगे, खुद पर भरोसा रखेंगे तो कभी भी मायूसी नहीं होगी और कभी भी तन्हा फील नहीं होगा। सो डियर लिसनर्स, इस प्यारी सी बात के साथ आइए मिलकर सुनते
1: फज़ान 97।

तक कर लिया है इस बुक को रीड, तो मुझे आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर करिएगा कि आपको कैसा लगा और डिफरेंट कैरेक्टर्स के मुतालिक आपकी क्या सोच है और आपके ख्याल में कौन सा कैरेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा है और कौन थोड़ा कम है।

सो देयर इज दिस, सो बेसिकली अ थाउजेंड प्लैनेट सन एक ऐसी किताब है जो कि अगर इंसान फील करे तो लिटरली इट ब्रोक योर हार्ट. लेकिन फिर उसको भी जब हम डिटेल में जाके पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि ना सिर्फ हमारा हार्ट ब्रेक हो रहा है बल्कि हम उस स्टोरी को बहुत फील कर रहे हैं. सो हम बात कर रहे हैं खालिद हुसैनी की मास्टरपीस क्लास नॉवल की जो कि है अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन. अगर आपने द काइट रनर पढ़ी है तो आप जानते ही होंगे कि खालिद हुसैनी की कहानियों में कितना दर्द होता है. और साथ ही साथ द बेस्ट थिंग इज़ के खालिद हुसैनी की जितनी भी बुक्स होती हैं वो रियलिटी बेस्ड होती हैं. उनमें आपको फिक्शनल चीज़ें कम दिखाई देती हैं. जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो रियलिटी के साथ जुड़ी हुई होती हैं. सो बेसिकली अगर हम बात करें कि द मेन प्लॉट क्या है इस स्टोरी का तो थोड़ा सा डिटेल में लंबा हो जाएगा. लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं अभी इसको स्टार्ट करती हूँ और फिर भी बीच में आ जाएगा एक अदद कमर्शियल ब्रेक सो हमारे लिसनर्स को ठीक तरीके से समझ नहीं आएगी. सो फिलहाल के लिए हम थोड़ी देर रुक जाते हैं और अभी हम किसी और टॉपिक पर बात करते हैं. एंड देन जब हम ब्रेक से वापसी पर आएंगे तब हम इस बुक का डिटेल रिव्यू शेयर करेंगे और फिर मैं आपसे भी जानूंगी कि आपकी क्या राय है, क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हैं और थीम्स भी इसके बहुत ज़्यादा हैं.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टोटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू

0: आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा।
0: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों भी प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
0: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
0: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
2: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
0: पिशावरी डेरा।
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
0: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
0: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
0: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
2: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
0: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
0: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
4: टर्न इट अप, रेडियो फाजा 97.1 FM।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम तुम सुनती हुई समातों को खुशामदीद दीवा डायलॉग में, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। तो लिसनर्स, आपको और मुझे साथ में हो चुका है तकरीबन एक घंटा कंप्लीट, यानी कि देखिए बातें करते करते वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, और जब गुफ्तगू इतनी खूबसूरत बा असर हो रही हो तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि वक्त किस कदर तेज़ी से गुजर रहा है। सो एक बार फिर से बताती चलती हूँ, 01157100971 है आपका और मेरा रابطے का नंबर, यानी ये वो नंबर है जिसके थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं। सो जल्दी से अपनी मज़े मज़े की सॉन्ग रिकमेंडेशन बताइए ताकि मैं अच्छे अच्छे गाने शो में शामिल करूँ। साथ ही साथ माई लवली डिवाज, आप हमें www.radiofaza.com.uk इस वेबसाइट के थ्रू ट्यून कर सकती हैं। सो आप इस वक्त क्या कर रही हैं और क्या करते करते मुझे सुन रही हैं ये भी बताइए, और आज के स्पाइस किचन के हवाले से भी आप मुझे अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस दे सकती हैं कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ पसंद हैं और आप क्या चाहते हैं कि मैं शो में कौन सी रेसिपीज़ ऐड करूँ। सो आइए फिलहाल के लिए सुनते हैं एक अदर खूबसूरत सा ट्रैक, ये ट्रैक है वीकेंड का। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वीकेंड सॉन्ग्स आर द बेस्ट सॉन्ग्स। अगर हम बात करें इंग्लिश गानों की तो टॉप ऑफ द लिस्ट जिस सिंगर को मैं सुनती हूँ वो है वीकेंड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीकेंड थोड़े से एग्रेसिव हैं और उनके सॉन्ग्स भी एग्रेसिव होते हैं, बट आई फील लाइक मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लस एडिक्टिव लगते हैं।

सो डियर लिसनर्स, आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक इस पर होती है आपसे मुलाकात, एंड देन स्टार्ट करते हैं द 1000 स्प्लेंडेड सन बुक रिव्यू।

वेल लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं 1000 स्प्लेंडेड सन बुक्स रिव्यू. सो बेसिकली अब जरा बात करते हैं इस स्टोरी की कहानी के बारे में. सो बेसिकली कहानी क्या है. कहानी का जो बैकड्रॉप है वो एक वॉर से रिलेटेड है जो कि अफगानिस्तान में स्टार्ट हुई थी. ये सफ़र शुरू होता है 1970 से लेकर और फिर आगे चलता जाता है पोस्ट 9/11 तक. यानी रिवॉल्व करते हैं और दो बिल्कुल मुख्तलिफ फीमेल्स के करेक्टर के गिर्द घूम रही है हमारी स्टोरी. जो हमारी स्टोरी का पहला करेक्टर है वो है मरियम और जो दूसरा करेक्टर है वो है लैला. अब बात करते हैं फर्स्ट करेक्टर की. जो मरियम का करेक्टर है वो स्टोरी में दिखाया जा रहा है एक ऐसे चाइल्ड का जो कि बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज है, सेल्फिश है, लेक्टिमेट है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है. उसके पास बचपन से ना कोई रुतबा था ना ही कोई वकार, लेकिन छोटी सी उम्र में उसकी ज़बरदस्ती फॉर सम रीजंस बचपन में ही उसकी एक फोर्सफुली मैरिज कर दी जाती है. ठीक है, एक ऐसे करेक्टर के साथ जो कि एज में उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं. इसी तरह से स्टार्ट होती है ये स्टोरी. अब ज़रा दूसरे करेक्टर की जाने बढ़ते हैं जो कि है लैला. ये करेक्टर जो है मरियम के करेक्टर से टोटली ऑपोजिट है. ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं, ब्यूटीफुल हैं, एजुकेटेड हैं और एक ब्राइट चाइल्ड होती हैं. उनके फादर का ड्रीम ये होता है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ अलग करके दिखाएं. लेकिन चूँकि वार स्टार्ट हो जाती है तो उनके सब ड्रीम्स अधूरे रह जाते हैं और वो जो कुछ हासिल करना चाहती हैं वो नहीं कर पाती. अच्छा, तो बेसिकली स्टोरी में ट्विस्ट कहाँ से आता है. ट्विस्ट यहाँ से आता है कि एक ऐसी सिचुएशन आती है कि लैला को जान बचाने के लिए उसी इंसान से, जिस इंसान से मरियम की शादी हो चुकी होती है, शादी करनी पड़ती है. जहाँ मरियम पहले से मौजूद होती है, ये जो दोनों फीमेल्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से होती हैं. शुरू में दोनों में काफ़ी हद तक जेलसी और एक नफ़रत का करैक्टर बिल्ड होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों का जो दुख होता है वो एक जैसा होता है और दोनों एक दूसरे की जो कि बहुत ही बड़ी दुश्मन होती हैं, दुश्मन से दोस्त बन जाती हैं और फिर इनका ये सफ़र स्टार्ट होता है. ये था इस बुक का डिटेल एंड कम्प्लीट रिव्यू. आई नो मैंने मेन चीज़ें आपसे शेयर कर दी. ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं उन्हें कोई ऐसा स्पॉइलर मिल जाए जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी इस बुक को ना रीड करें. मैं चाहती हूँ कि आप इस बुक को खुद से रीड करें, खुद से हस करें कि डिफरेंट करेक्टर्स की क्या डेवलपमेंट है, किस किरदार ने किस तरह से काम किया और आपके ख्याल में कौन सा करेक्टर ज़्यादा बेटर है. बेसिकली ये एक शॉर्ट सा रिव्यू था इस बुक का. अच्छा, अब मुझे इस किताब से क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी वो आपसे शेयर करती हूँ. पर्सनली मुझे इस किताब की तीन बातें सबसे ज़्यादा पसंद आई. द फर्स्ट थिंग इज़ वुमन पावर एंड द सेकेंड थिंग इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव एंड द लास्ट And third thing is real picture of war. Basically ये तीनों चीज़ें हैं जो मुझे इस स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. Firstly, वुमेन पावर. हमारे यहाँ अक्सर औरतों को कमज़ोर दिखाया जाता है, लेकिन मरियम और लैला का जो करेक्टर था वो हमें ये सिखाता है कि बदतरीन हालात में भी औरत कैसे स्टैंड ले सकती है, कैसे खुद को मजबूत रख सकती है और कैसे आगे बढ़ सकती है. अब जो दूसरी चीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव. इस बुक में सच्ची मोहब्बत रोमांस नहीं है, लेकिन मोहब्बत एक माँ और बेटी का रिश्ता है. उसके अलावा मरियम और लैला के बीच में जो एक इन्फेचुएशन डेवलप होती है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनता है, उस फॉर्म ऑफ मोहब्बत को दिखाया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि किस तरह से एक औरत दूसरी औरत के साथ मिलकर अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही है और वो डिफरेंट तरह के हालात से समझौता कर रही हैं. अब जरा बात करते हैं कि तीसरी थिंग, तीसरी क्या ऐसी चीज़ जो मुझे इस किताब की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. हम हमेशा न्यूज़ पर बम ब्लास्ट इस तरह की चीज़ें देखते हैं. ये किताब दिखाती है कि उन ब्लास्ट के बाद आम लोगों की आम सी ज़िंदगी कैसे तबाह हो जाती है. हम क्या करते हैं, हम सभी न्यूज़ सुनते हैं, वक्ती तौर पर हमें बुरा फील होता है, लेकिन फिर हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं. लेकिन जब आप इस बुक को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि
इस तरह के जो हालात होते हैं, इस तरह के जो हादसात होते हैं, वो लोकल पीपल पर किस तरह से असर अंदाज होते हैं। सो लिसनर्स, अगर बात की जाए व्हाट्स माय फाइनल रेटिंग, सो इट्स अ सॉलिड 5 out of 5। हुसैनी की राइटिंग स्टाइल इतना पावरफुल है कि आपको लगेगा कि आप काबुल की उन गलियों में खुद घूम रहे हैं। सो इस किताब को जो टाइटल है, एक पुरानी पर्शियन पोइम से लिया गया है जो कहती है, वन कुड नॉट काउंट द मून्स दैट शिमर ऑन हर रूफ आर द थाउजेंड स्प्लेंडेड सन दैट हाइड बिहाइंड हर वॉल्स। यानी हर अंधेरी रात के बाद एक उम्मीद की सुबह ज़रूर होती है। सो मेरा मशवरा है, अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो इसी वीकेंड ज़रूर पढ़ें, लेकिन अलर्ट, अपने पास बहुत सारे टिश्यूज भी रख लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं इस किताब को पढ़ते पढ़ते। अब बारी आती है उन सभी लोगों की, अगर तो आपने 1000 स्प्लेंडेड सन्स ऑलरेडी पढ़ी है तो मुझे बताइए कि मरियम का करेक्टर आपको कैसा लगा और किस सीन ने आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल किया। सो बताने के लिए एक बार फिर से आपको बताती चलती हूँ, 0115710971 जो कि है मेरा और आपका रबते का नंबर है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, इस पर हम कुल के तफसील से गुफ्तगू करेंगे। सो आई थिंक सो कि हमारे लिसनर्स भी काफ़ी हद तक इमोशनल हो चुके होंगे इस इमोशनल सी स्टोरी को सुनने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं आपसे डिफरेंट किताबों के रिव्यूज शेयर करूँ, सो डू लेट मी नो एंड आई विल शेयर यू अकॉर्डिंग टू योर परस्पेक्टिव, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो दे लिसनर्स, आइए मिलकर सुनते हैं एक अदद अच्छा सा प्यारा सा ट्रैक। सोच रही हूँ कि कौन सा ट्रैक प्ले किया जाए। सो अब फाइनली मुझे एक अच्छा सा ट्रैक मिल चुका है, तो सुनते हैं ये ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आप सभी से मुलाकात अगेन, फिर स्टार्ट करेंगे आज का मज़ेदार सा द स्पाइस किचन।

सो लिसनर्स, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड कोट की जानिब। सो आज का जो सेकंड कोट है वो उन सभी लोगों के लिए है जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज हम उनको बताएंगे कि मेहनत करने का क्या फ़ायदा होता है। Listen to this very carefully. Work hard in silence. Let your success be your noise. So, ये कोट हमें सिखाता है कि हर स्टेप्स पर दूसरों को बताना या दिखावा करना ज़रूरी नहीं होता। आजकल के दौर में लोग क्या करते हैं कि हर काम करने से पहले लोगों को बताते हैं, लेकिन जो लोग असली कामयाबी चाहते हैं वो बातें कम और काम ज़्यादा करते हैं। तो अपने गोल्स को खामोशी से परस्यू करते चले जाएँ और जब आप किसी मुकाम पर पहुँच जाएंगे और आपका रिजल्ट सामने आएगा तो पूरी दुनिया को आपका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। सो अपनी कामयाबी को खुद बोलने का मौका दें। सो कीप हसलिंग क्वाइटली। सो लिसनर्स, आज के जो दो कोट्स थे हमारे, जिनसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने तमाम दर्टीवर्स और जितने भी हमारे मेल लिसनर्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को ग्रो करें। सो आज के इन दोनों कोट से हमें ये चीज़ सीखने को मिली है कि द फर्स्ट थिंग इज ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड द सेकेंड थिंग इज वर्क साइलेंटली। एंड आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो उम्मीद करती हूँ कि इन खूबसूरत सी मोटिवेशनल सी बातों से आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कहीं ना कहीं तब्दीली तो रोनुमा होगी। सो डियर लिसनर्स, इसी के साथ ही अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार एंड देन वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेगमेंट विच कॉल्ड द स्पाइस किचन। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली आरजे सनम फातिमा और आप सुन रहे हैं डीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड टैप पे। तो लिसनर्स, जैसा कि आज हमने जिस स्टोरी को डिस्कस किया वो रिलेट कर रही थी अफगानिस्तान से, सो उसी से सडनली मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि क्यों ना आज की रेसिपी भी हम अफगानिस्तान से रिलेटेड बनाएं, क्योंकि हमने हर तरह का फूड ट्राई किया है, देसी, एशियन, कॉन्टिनेंटल, साथ ही साथ चाइनीज, तो अभी तक हमने कोई भी ऐसी रेसिपी नहीं ट्राई की जो कि हो अफगानी। सो आज हम बनाएंगे एक सिंपल सी ऑथेंटिक अफगानी डिश जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एंड आई थिंक सो एशियन फैमिलीज पे बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। सो बनाएंगे उसको लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से और अपने मेथड से। सो बेसिकली आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक अफगानी काबली पुलाव। ये पुलाव नॉर्मल पुलाव से या फिर बिरयानी से बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता है। इसका जायका थोड़ा सा स्वीट और थोड़ा सा टैंगी होता है क्योंकि हम इसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें ऐड करते हैं, तो ये नॉर्मली चावलों से मुख्तलिफ होता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से मैं शेयर करती हूँ आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स ताकि आप जल्दी से नोट कर लें और फिर स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसीजर। सो जो इंग्रेडिएंट्स हमें इस रेसिपी में है दरकार, सबसे पहले हमें चाहिए मटन या फिर चिकन 750 ग्राम्स। वैसे इट्स बेटर कि आप मटन यूज़ करें क्योंकि अफगानी पुलाव एसोसिएट ही मटन से किया जाता है, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपके पास मटन अवेलेबल ना हो तो आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ प्याज। प्याज आपने 2 से 3 अदद ले लेने हैं, अच्छे से उनको कट करके बारीक सा रख लें। साथ ही साथ अगला इंग्रेडिएंट है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका, वाटर 5 से 6 कप। अब बात करते हैं चावलों की, तो इस रेसिपी में ऐड होंगे बासमती राइस 3 कप, जिनको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। सबसे पहले वॉश करने के बाद फिर हमने उन्हें भिगो के थोड़ी देर के लिए रख देना है। इससे ये होता है कि हमें आइडिया हो जाता है चावलों का कि वो कितना पानी अब्जॉर्ब करते हैं, और फिर लास्टली जब हम दमा लगाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। पिसा हुआ ज़ीरा और इलायची पाउडर 1 टीस्पून। इससे जो हमारी रेसिपी है उसमें हल्का सा गरम मसाले का एक फ्लेवर ऐड हो जाता है। अब बात करते हैं अफगानी गार्निशिंग की, सो इस रेसिपी में ऐड होंगी कैरेट्स 2 अदद, जिनको हमने बिल्कुल अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेना है। साथ ही किशमिश 1 से 2 कप, बादाम 10 से 12 अदद, उसके बाद चीनी 2 टेबलस्पून, देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल 3 to 4 टेबलस्पून। तो लिसनर्स, जब आपको आइडिया हो चुका होगा कि क्यों इसका जायका थोड़ा सा स्वीट थोड़ा सा टैंगी है, क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर, साथ ही साथ हम ऐड कर रहे हैं इस रेसिपी के अंदर कैरेट्स, तो इस वजह से जो टेस्ट है वो थोड़ा सा टैंगी हो सकता है। अब जरा बात करते हैं स्पाइसेस की, तो जो अफगानी पुलाव होता है हम उसमें बिल्कुल भी टिपिकल स्पाइसेस नहीं ऐड करते, ना ही सुरख मिर्च, ना ही हम ग्रीन चिलीज और ना ही रेड चिलीज। सिंपली हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, और इसमें टोटली जो टेस्ट होता है वो यखनी का होता है, साथ ही साथ काली मिर्च का होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्लैंड होते हैं लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलिशियस होते हैं। तो लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट जिनसे हम बनाएंगे ये ऑथेंटिक काबली पुलाव। थिंक सो आप सभी ने नोट कर लिए होंगे, बट फिर भी जस्ट इन केस अगर हमारी किसी डिवा से कुछ भी मिस हो चुका हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। सिंपली 0115710971 आप इस नंबर पे जाकर एक छोटा सा मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगी।

सो लिसनर, अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसको बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपको प्रेशर कुकर में तकरीबन 1 से 2 कप कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, ठीक है। फिर उसमें कटी हुई प्याज शामिल कर लेनी है, साथ ही उसे तब तक पकाना है जब तक वो बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही आपका प्याज हो जाए गोल्डन ब्राउन, सौंफ बारी आती है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही साथ मटन या फिर चिकन शामिल करने की। सो हम ये दोनों शामिल कर देंगे और मज़ीद इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही हमारे मीट का रंग थोड़ा सा बदल जाएगा तो अब बारी आएगी अगले स्टेप की। सो इस अगले स्टेप में हम शामिल करेंगे ज़ीरा, नमक, 5 से 6 कप पानी। इस सब को डालकर इसको ऊपर से कर देंगे बंद और 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं चिकन तो 5 से 10 मिनट इनफ है, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं मटन तो फिर 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। और 20 से 25 मिनट के फौरन बाद आप सभी को मालूम है कि कुकर की सीटी की आवाज़ तो बजती है, तो जैसे ही आपको आवाज़ आए तो समझ जाएं कि अब आपका टाइमर कंप्लीट हो चुका है। सो 1 से 2 मिनट के वक्फे से इसको ओपन करके चेक करें कि क्या आपका गोश्त गल चुका है। सो जैसे ही आपका मीट गल जाए तो मीट को अलग पीसेस पे निकाल कर रख लें और साथ ही साथ यखनी को एक दूसरी जगह पर रख दें। अब आपने क्या करना है, एक अदद और पैन ले लेना है और उसमें शामिल करना है 2 टेबलस्पून देसी घी। अच्छे से इसको गर्म कर लें, फिर इसमें लंबी कटी हुई गाजर, किशमिश और बादाम शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। फिर 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करें, साथ ही साथ हल्की आंच रखें, 2 से 3 मिनट तक पकाएं जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए और गाजर भी बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। सो जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए इसे प्लेट में निकाल कर अलग से रख दें। अब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की। एक बड़े से बर्तन को ले लें, ठीक है, इसमें वही यखनी शामिल कर दें जो हमने मीट से निकाली थी और अच्छे से उबाल लें। यखनी चावल के हिसाब से आप ले लीजिएगा, जस्ट अगर आपकी यखनी थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप बाकी की स्टॉक कर लीजिएगा। आपने इसमें शामिल करना है सिर्फ 4 से 5 कप। उबलती हुई यखनी में भिगोए हुए बासमती चावल डाल दें, ठीक है, फिर फ्लेम को कर दें बिल्कुल मीडियम और तब तक पकाएं जब तक आपके चावल 80-85% कुक हो जाएं। अब इसके ऊपर पका हुआ मीट रखें और एक साइड पर वो तैयार की हुई कैरमलाइज्ड गाजर और साथ ही साथ किशमिश टॉपिंग्स में ऐड कर दें। अब ऊपर से शामिल होगा इलायची पाउडर और साथ भुना हुआ ज़ीरा। इन सबको स्प्रिंकल करें, पॉट को अच्छे से फॉइल की मदद से कवर कर दें और 10 से 15 मिनट के लिए इसे दम पर लगा के रख दें। याद रखिएगा आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम थोड़ा सा भी तेज़ हुआ तो चांसेस हैं कि चावल ओवरकुक हो सकते हैं और फुल रेसिपी ख़राब हो सकती है। सो बिल्कुल आराम से इसे आपने 10 से 15 मिनट तक दम पर छोड़ देना है और 10 से 15 मिनट के बाद आपका मज़ेदार सा ऑथेंटिक काबली पुलाव हो जाएगा तैयार। सो देखा कितनी सिंपल सी, बेसिक सी, इजी सी रेसिपी थी। अगर आप आज ही इसे ट्राई करेंगे तो आप भी ये कहेंगे। और मज़े की बात यह है कि यह खाने में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, टेस्टी है और आपको एक अलग ही तरह का टेस्ट खाने को मिलेगा। सो मेरी रिकमेंडेशन पर मैं तो यही कहूँगी कि आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें, ट्राई करने के बाद मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक। सो डियर लिसनर्स, डीवा डायलॉग का ये सफर हुआ जाता है खत्म। आपसे भी से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए दिन के साथ, नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी नई गॉसिप्स के साथ। सो तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दें इजाज़त। जाते जाते एक बार फिर से बताती चलती हूँ, 01157100971 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। सो इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो लाजमी ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और आज ही मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और मज़ीद ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए भी मुझे अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन दीजिएगा। वो तमाम रेसिपीज़ हम शो में शामिल करेंगे जो आप सीखना चाहते हैं। सो जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते आप सभी के लिए एक अच्छा सा गाना प्ले कर देती हूँ। सो ये गाना सुनते सुनते हम शो को करते हैं एंड।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन। हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट moodnottingham.com 948 Woodsboro Road, Nottingham NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट।
4: टेस्ट भी, वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। फुल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज आपसे नसल राज की उसी के साथ साथ प्रोग्राम में मेरा आपका साथ आता है। ठीक है, ठीक दो बजे तक मेरे पास चंद फरमाइश थी, मैंने सोचा कि उनको प्रोग्राम में पूरा कर दिया जाए। गला भी थोड़ा सा गड़बड़ है तो मेरी कोशिश यही है कि थोड़ा कम ही आपके साथ बोलूं। मतलब थोड़ी हल्की फुल्की मुझे चुभन हो रही है, गले में दर्द हो रही है, तो उस वजह से मुझसे सही तरीके से बोला भी नहीं जा रहा। अभी इसी के साथ साथ सरताज की एक आवाज़ शामिल करूँ ना तो फिर ढेरों फरमाइश उनकी आवाज़ में आ जाती हैं। बट अभी जो है ना मेरे पास एक ट्रैक की फरमाइश आई है तो मेरा दिल है उसको भी पूरा कर देते हैं। स्टे ट्यून्ड 97.1 FM में डैप मिलते हैं इस खूबसूरत ट्रैक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। वेल, उसी के साथ साथ खूबसूरत खूबसूरत ट्रैक शाम के जा रहे हैं आपके अपने दरमियान। अभी जो है मेरे पास प्रोग्राम में छोटे छोटे मैसेज भी शामिल होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में अभी कर लेते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि इस ट्रैक के बाद एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक आएगी, कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात कर लें।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समाज को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। हो गई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज़ आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आज की सुर्खी के साथ साथ। कमर्शियल ब्रेक हाल हो चुकी थी, कमर्शियल ब्रेक पार रही आपसे मुलाकात। अभी मेरे पास एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको भी प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए। शामिल करेंगे आपके अपने दरमियान कोक स्टूडियो सीजन 10 साहिर अली बग्गा की आवाज़ में और आयमा बेग की आवाज़ में।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वर्जन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रंजफोक्स लॉन्च आवाज़, आप सुन रहे हैं सुरराज की सुरुचि के साथ साथ। अभी हर प्रोग्राम में वक्त हो जाता है हमारे लास्ट सेगमेंट का, पहले और लास्ट सेगमेंट यानी कि हमारे म्यूजिक का जो सेगमेंट हमने रखा हुआ है लास्ट पे, जिनमें हम आपकी ढेरों फरमाइशों को पूरा करते हैं। अभी मेरे पास एक फरमाइश मौजूद है और आप महसूस भी करें होंगे कि मुझे बोला नहीं जा रहा, लेकिन हम उसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं और उम्मीद करूंगी कि आपको ये ट्रैक पसंद आएगा। बट इसके उस पर आपसे मुलाकात आपकी ढेर फरमाइशों को पूरा करते हुए मैं दे रही हूँ आपका साथ, ठीक ठीक 2 बजे तक मिलते हैं इस ट्रैक के उस पर।
1: I think I should move on.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं सलोड आज की सलोड। उसी के साथ साथ अब वक्त हुआ जाता है खत्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का साथ अच्छा लगा होगा, आज का साथ पसंद भी आया होगा। लेकिन कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ, नई यादों के साथ, नई कहानियों के साथ। सो कल तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और अपने दिलों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। छोड़े जाती हूँ आपको एक और खूबसूरत से ट्रैक के साथ। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा और आपका अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, और अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि नेकी कभी जाय नहीं जाती, वो किसी न किसी सूरत वापस जरूर आती है। अच्छा दोस्तों, वक्त हो गया है एक खूबसूरत नगमे का, मौसीकी के इस मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे कुछ दिलचस्प पैगामात, आपकी फरमाइशें और मजीद खूबसूरत बातों के साथ।

वेलकम बैक एक बार फिर आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM और मैं हूं आपका दोस्त सुजैफा हैदर। उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत नगमा पसंद आया होगा। अगर आप भी अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं तो अभी हमें मैसेज करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। मैसेजेस को शामिल करते हैं, आज के कुछ खूबसूरत पैगाम हैं। पहला पैगाम आया है जेहलम से अहमद की तरफ से, लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम रोज सुनते हैं, आपकी आवाज़ दिन भर की थकन उतार देती है। मेरी तरफ से अपने तमाम घर वालों और खासतौर पर अपने वालदैन के नाम एक खूबसूरत गाना प्लीज़। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे, वालदैन का साया सलामत रखे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। एक और पैगाम आया, ये पैगाम आया मीरपुर आज़ाद कश्मीर से आयशा की तरफ से, क्योंकि मीरपुर के हालात अच्छे नहीं हैं। कहते हैं कि मेरी तमाम सहेलियों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए और मेरी तरफ से एक खूबसूरत गाना सुनवा दीजिए। आयशा बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाए और आपको कामयाबियों से नवाजे। आज की मालूमाती बात भी सुनते जाइए, क्या आप जानते हैं कि मुस्कुराना सिर्फ दूसरों को खुशी नहीं करता बल्कि आपके अपने जहनी दबाव को भी कम करता है। साइंस भी ये कहते हैं जब इंसान मुस्कुराता है तो जिस्म में से ऐसे हार्मोन खारिज होते हैं जो खुशी और सुकून का एहसास पैदा करते हैं। तो आज फैसला कीजिए कि किसी ना किसी को जरूर मुस्कुराने की वजह देंगे आप। चलिए गाना डेडिकेट करते हैं अहमद को, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

चेहरे पे। लहजों के तगैयुर से ये अंदाजा हुआ हम दोनों अलग ठीक हैं, एक साथ नहीं ठीक। ये शेर है ताहिर महमूद हाशमी का। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि एक और खूबसूरत शेर मुलाहजा कीजिए। चराग खुद नहीं चलते जलाए जाते हैं, मोहब्बतें खुद नहीं मिलती निभाई जाती हैं। एक और खूबसूरत नगमे की तरफ चलते हैं और वापसी पर करेंगे कुछ दिलचस्प सवाल और जवाब, मजीद पैगामात और सुनाएंगे एक छोटी सबक अमोस कहानी। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए फजा 97.1 FM के साथ। ये सॉन्ग है आयशा मीरपुर से, उनको डेडिकेट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ख्वाहिश का फरमाइश का इजहार किया था, इसलिए उनकी फरमाइश को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए ये सॉन्ग।

दोस्तों अब सुनाते हैं एक छोटी सी सबक आमोज कहानी। कहते हैं एक गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था जो हर रोज लोगों की मदद करता था। कोई बीमार होता तो दवाई ला कर देता, कोई रास्ता भूल जाता तो उसे मंजिल तक पहुंचाता। लोग उससे पूछते कि तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होता, और मुस्कुरा कर कहता कि फ़ायदा तो मुझे तब मिलता है जब मैं किसी के चेहरे पर सुकून देखता हूँ। वक्त गुजरता गया, वो बूढ़ा शख्स बीमार हो गया। अब गाँव के लोग उसकी मदद करने लगे। तब उसे एहसास हुआ कि जो नेकी वो करता रहा वही नेकी उसके पास वापस आ गई। चलिए दोस्तों अब एक और खूबसूरत नगमे की तरफ चलते हैं और वापसी पर करेंगे कुछ दिलचस्प सवाल और जवाब, मजीद पैगामात और सुनाएंगे छोटी सी इख्तितामी गुफ्तगू। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा एफ एम 97.1 और मैं हूँ आपका होस्ट हुसैफ अहद। सुनते रहिए फजा 97.1।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कढ़ाई की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग

0: लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
0: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
2: यू आर प्लेइंग फजान 97.1 FM।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा FM 97.1। उम्मीद है कि गाना आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने किसी खास के नाम की खूबसूरत गाना सुनना चाहते हैं तो अभी हमें अपना पैगाम भेज दीजिए। हो सकता है अगली फरमाइश आप ही क्यों। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज वक्त है। पैसा अगर चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर गुजरा हुआ लम्हा कभी वापस नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि अपने वक्त को उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपकी कदर करते हैं, और अपने ख्वाबों पर जरूर खर्च कीजिए, क्योंकि ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए होते हैं। आज आपको एक ऐसी दिलचस्प बात बताते हैं जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। क्या आप जानते हैं कि शहद वो वाहिद कुदरती गजा है जो अगर सही तरीके से महफूज रखी जाए तो बरसों बल्कि हजारों साल तक भी खराब नहीं होती। माहिरीन को कदीम मकबरों से भी ऐसा शहद मिला है जो इस्तेमाल के काबिल था। कुदरत की यही छोटी छोटी निशानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि दुनिया कितनी हैरत अंगेज जगह है। चलिए सवालात की तरफ चलते हैं। आज का सवाल है, अगर आपको एक हफ्ते के लिए मोबाइल फोन बंद करके सिर्फ अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने का मौका दिया जाए तो क्या आप तैयार होंगे? अपना जवाब हमें जरूर भेजिए। दिलचस्प जवाबात हम अगले हिस्से में जरूर पढ़ेंगे। जवाबात भेजने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 0115-7100-971। कुछ पैगाम शामिल करते हैं। ये खूबसूरत पैगाम आया है गुजरात से अली हसन की तरफ से। कहते हैं कि मेरी वालदा आज पहली बार आपका प्रोग्राम सुन रही हैं, उनके लिए खूबसूरत गाना प्लीज, और दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें हमेशा सेहतमंद रखे। अली हसन, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी वालदा को लंबी सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी अता फरमाए, आमीन। एक और पैगाम आया है मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सिदरा की तरफ से। मैं अपनी छोटी बहन के साथ पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन आपका प्रोग्राम भी साथ साथ सुन रहे हैं। हमारी तरफ से सब सुनने वालों को सलाम। बहुत शुक्रिया सिदरा, अल्लाह ताला आपको दोनों इल्म में बरकत अता फरमाए, इम्तिहानात में कामयाबी और जिंदगी में आसानी अता फरमाए।

दूसरों की कामयाबी देखकर हसद ना करें, बल्कि ये सोचें कि अगर अल्लाह ने उन्हें दिया है तो वो आपको भी दे सकता है। हर इंसान का वक्त मुख्तलिफ होता है, इसलिए मायूसी कभी भी कामयाबी का रास्ता नहीं बन सकती। अब दोस्तों वक्त हो गया एक और खूबसूरत नगमे का, लेकिन इसके बाद हम लेकर आएंगे दिलचस्प पहचानिए आवाज सेगमेंट, जिसमें आपको एक मशहूर शख्सियत की आवाज़ का जुमला सुनाया जाएगा और सही जवाब देने वाले सामईन का नाम प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। तो कहीं मत जाइए, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा FM 97.1 और मैं हूँ आपका मेजबान हुसैफा हैदर। मौसीकी से लुत्फ उठाइए, हम अभी हाजिर होते हैं। सुनते रहिए फजा 97.1।

दोस्तों, अब वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम के एक दिलचस्प सेगमेंट का, पहचानिए आवाज का। इस सेगमेंट में हम आपको एक मशहूर शख्सियत की आवाज या उनका एक मुख्तसर सा जुमला सुनाएंगे और आपने बताना है ये आवाज किसकी है। तो आइए तवज्जो से सुनिएगा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

एक बार फिर अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा FM 97.1 और मैं हूँ मोहम्मद हुज़ैफ़ा हैदर। आज के प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हम वक्फ कर रहे हैं एहसान मंदी के नाम। क्या हमने कभी दिल से अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया? क्या हमने अपने असातिज़ा, दोस्तों या उन लोगों को याद किया जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया? शुक्रगुजारी सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक खूबसूरत रवैया है। जो शख्स दूसरों की नेमतों को पहचानता है, अल्लाह ताला उसकी नेमतों में मजीद बरकतें अता फरमाते हैं। अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, किसी को हौसला दें, किसी की बात गौर से सुने, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। यकीन जानिए छोटे छोटे काम मुआशरे को खूबसूरत बना देते हैं। अगर आज आप किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं तो हिम्मत ना हारिए, अपने रब पे यकीन रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए और अपने वालिदैन की दुआओं को अपनी ताकत बनाइए।

एक मरतबा फिर खुश आमदीद। उम्मीद है नगमा आपको पसंद आया होगा। दोस्तों याद रखें, कामयाब इंसान वो नहीं जिसकी ज़िंदगी में मसाइल ना हो, बल्कि कामयाब वो है जो मसाइल के बावजूद आगे बढ़ना जानता हो। आज का खूबसूरत पैगाम यही है कि अपने ख्वाबों को ज़िंदा रखिए, अपनी उम्मीद को मजबूत रखिए और अपने रब पे भरोसा रखिए। अपने रब पे भरोसा कभी भी कम ना होने दें। अगर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी रेडियो फजा के साथ जोड़िए।

फजा 97.1 एफएम के तमाम लिसनर के लिए दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं कि दुनिया का सबसे मुख्तसर जंगी तनाजा सिर्फ 38 मिनट तक जारी रहा था। ये जंग 1896 में बरतानिया और जिंजपार के दरमियान हुई और इसे तारीख की मुख्तसर तरीन जंग माना जाता है। वाकई दुनिया हैरत अंगेज हकायक से भरी हुई है और यही छोटी छोटी मालूमात हमारे इल्म में इजाफा करती है, इसलिए रोजाना कुछ नया सीखने की आदत जरूर डालें। जब इल्म की बात हो जाए तो दिल चाहता है एक खूबसूरत ख्याल भी आपके साथ बांटा जाए। आज का खूबसूरत ख्याल ये है, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा कदम आगे बढ़ना नहीं बल्कि सही वक्त पर रुक जाना होता है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं, बाज़ औक़ात खामोशी इंसान की शख्सियत का सबसे मजबूत तारुफ बन जाती है। और यही खूबसूरत ख्यालात हमें एक दूसरे के करीब भी लाते हैं, जैसे आपके पैगामात जो हमारे प्रोग्राम की जान होते हैं। सामीन के पैगामात शामिल करते हैं, एक पैगाम आया है लाहौर से अरहम की तरफ से, कहते हैं कि मेरी तरफ से अपने तमाम दोस्तों को सलाम और उन सब के लिए खूबसूरत पुराना गाना प्लीज। ओके अरहम भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी दोस्तियों में हमेशा मोहब्बत और खुलूस कायम रखे। एक और पैगाम की तरफ बढ़ते हैं, यह आया है कोटली से मरियम की तरफ से, कहते हैं मैं अपनी वालदा के साथ कपड़े सिलाई कर रही हूँ और रोजाना आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, आपकी आवाज घर का माहौल बहुत अच्छा कर देती है। मरियम आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत सलामती अता फरमाए और आपके घर में हमेशा खुशियाँ कायम रखे। दोस्तों आपके ही पैगामात हमारे प्रोग्राम को खास बनाते हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए आज का एक छोटा सा चैलेंज भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले अरहम के लिए एक पुराना गाना आपको सुना देते हैं, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

आपके लिए एक नसीहत भरी बात यह है कि मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वाले अगर आपके अच्छे वक्त में शर्मिंदगी और नदामत के आंसू लेकर आपकी चौखट पे हाजिर हों तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, लेकिन एतबार और भरोसा कभी ना कीजिए, क्योंकि खैर खही के लिए नहीं बल्कि आपकी फिर से तबाही और रसवाई के लिए हाजिर हुए हैं।

अभी तक अरहम भाई की फरमाइश आ रही थी, कुछ पुराने सॉन्ग्स जो अरहम भाई ने हमारे ख्वाहिश का इजहार किया था, तो हमने उनके लिए प्ले किया।

0: हर पल ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
8: You are listening 97.1 FM.

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन,
3: रेडियो फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: Back to back music.

97.1 FM. Back to back hip hop music.

जी हाँ जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके हैं लड़के वापिस से उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फॉर 97.1 एफएम एंड डैब प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव जोन। और मुझे कहते हैं जनाब उस्मान खान, वो बंदा जो आपके साथ हर रोज शाम 5 से 7 रहता है, इस उम्मीद के साथ रहता है कि इस दौरान आप लोग भी मेरे साथ साथ रहेंगे। नए आने वाले तमाम तर मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे, जिन लोगों ने अभी अभी फजा 97.1 एफएम को ट्यून प्लस चूज़ किया है। और आपको बताते चलें कि आपने बिल्कुल भी खामोशी से नहीं बैठना, बल्कि आपने हमारा साथ देना है, अपने होने का एहसास दिलाना है। और उसके लिए तरीकाकार बहुत ही आसान सा है, जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन का डायल पैड ओपन कर लीजिए, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, उस नंबर को नोट करिएगा फिर सेव करिएगा। सो द नंबर इज 0115710091। आई अगेन रिपीट, दिस नंबर इज वेरी स्लोली स्लोली 0115710091। इस नंबर को नोट कीजिएगा, सेव कीजिएगा और फिर व्हाट्सएप पर जाकर कोई भी पसंदीदा गजल, नज़्म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या फिर किसी चाहने वाले के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिख कर भेज दीजिएगा। हाँ, बेहतर होगा अगर आप अपना नाम भी साथ लिखें और जिस जगह पे आप रह रहे हैं या जिस जगह पे आप इस वक्त मौजूद हैं उसका नाम भी ज़रूर लिख दीजिएगा। हवा के दोष पे लहराता गुनगुनाता सनसनाता हुआ आपका पैगाम जैसे ही मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर से चकमगाएगा, सुनते ही तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नज़र हो जाएगा। अगर आप तक हमारे रेडियो की ठीक से ट्रांसमिशन नहीं पहुंच पा रही तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी मुझे सुन सकते हैं। गूगल पर जाइए और जाकर लिखिए radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और मुझे लाइव सुन लीजिएगा। इसके अलावा हमारे तमाम तर आरजेस जिस जिस टाइम पे जो जो प्रोग्राम करते हैं तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। और अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन और आप चाहते हैं कि रेडियो फजा आपके बिजनेस को प्रमोट करने में आपका साथ दे तो आप हमारी मार्केटिंग टीम से रابطہ कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पे आप एक छोटा सा मैसेज छोड़ दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद रابطہ कर लेगी। इसके अलावा आप एप्लीकेशन पर भी हमें सुन सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से। प्ले स्टोर एप स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कीजिए और दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह बआसानी आप मुझे सुन सकते हैं, बशर्ते इंटरनेट आपके पास मौजूद हो। इन तीन रास्तों के अलावा चौथा रास्ता भी मौजूद है और वो उन लोगों के लिए है जो इस वक्त ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं। आप मुझे फजा डैब पर भी ट्यून कर सकते हैं। जी हाँ जनाब, फजा आपको डैब पर भी मिलेगा और आप डैब पर मजीद क्रिस्टोरेंट के लिए वॉइस के साथ मुझे सुन सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल होकर अपने होने की फरमाइश भी कर सकते हैं। बताइएगा क्या सुनना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में आप, आपकी प्लेलिस्ट किस तरह की है ये मैं जज करूंगा और आप बस आवाज तक रहिएगा। जनाब आज के प्रोग्राम में खूबसूरत सी बातें भी डिस्कस होंगी, खूबसूरत से ट्रैक भी शामिल किए जाएंगे और साथ साथ आपके मैसेजेस भी होंगे जिनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सियाने लोग कहा करते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सीने में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो थोड़ा सा हौसला आपको करना पड़ेगा प्रोग्राम में शामिल होकर अपने आप को साबित करने का। सो जब तक आप इस तरफ जाते हैं तब तक आपको एक खूबसूरत सी आवाज़ सुनाता हूँ, उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इस आवाज़ के उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फजा 97.1 एफएम एंड डैब, आल्सो प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव सॉन्ग।

ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। खूबसूरत सा पंजाबी ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं और ये पंजाबी ट्रैक उन तमाम तर मेरे सिख दोस्त ब्रदर्स के नाम जो इस वक्त मुझे टैक्सी ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, और खास तौर पे उन लोगों के लिए भी जो उनके साथ उनके पैसेंजर्स हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सिर्फ हमारे जो ड्राइव करते हुए हजरात हैं वही मतवजो ना हों, बल्कि अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है तो उसके साथ बैठा हुआ पैसेंजर जो है मेरे लिए वो भी उतना ही मायने रखता है जितने आप रखते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी कभी आप टैक्सी ड्राइव करते हुए कोई आपका हम जबान आपको मिल जाता है और आप रेडियो सुन रहे होते हैं तो उनका नाम पूछ के मुझे बता दिया करें, ताकि मैं उनके नाम भी एक अच्छा सा ट्रैक कर सकूं जिससे वो उनका कम से कम बाकी बचा हुआ दिन जो है वो अच्छा गुजर सके और वो आपको हमेशा याद रख सकें। तो इसलिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप गपशप में उनसे उनका नाम पूछें और उन्हें बताएं कि आपके लिए स्पेशली रेडियो पर मैं गाना लगवा रहा हूँ। ना थोड़ा को जाना है लवांच तह, ना मेरा को जाना है लानिच, बंदा खुश हो जाएगा। हाँ खैर जी, इंसान तो दुनिया में आए दूसरों को खुश करने के लिए। हम लोग बहुत कम ऐसा होता है कि अपनी ज़ात को खुश रख सकते हैं, मगर सारी ज़िंदगी हमारी इसी काम में लग जाती है दूसरों को खुश करने में, और बाद में पता चलता है कि जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुश ही नहीं हुए। बहरहाल पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब दिमाग परेशान हो तो आपका चेहरा कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा खूबसूरत और आपके चेहरे से नूर टपके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद जो है मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप दिमाग पर ज़्यादा जोर देते हैं तो उसका सारे का सारा असर जो है आपके चेहरे पर पड़ता है, यू नो। और आज के दौर में बड़ी खूबसूरत सी बात किसी ने कही थी कि इंसान जो है वो अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, बाहर से जैसा मर्जी हो। गलत बात है, मैं कहता हूँ कि इंसान बाहर से ही खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि आज के माशरे में लोग जो देखना ही ये चाहते हैं। ज़ाहरी सूरत ही सारे देखते हैं, अंदरूनी सूरत कौन देखता है आज के दौर में। हाँ, आप कितने अच्छे हैं इसका फ़ैसला आपने खुद करना है, लोगों ने नहीं, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी के फैसले लोगों पर छोड़ देते हैं तो कभी भी आपके हक में कोई फ़ैसला नहीं करता, चाहे आप जितने मर्ज़ी अच्छे हो जाएं। वो किसी सियाने ने कहा था ना कि आप 99% नेकियां करते रहो, एक बदी कर दें तो वो 99 जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। लोग आपकी उस एक गलती को पकड़ लेते हैं, बल्कि आपकी 99 जो अच्छाइयाँ होती हैं उनको बुला देते हैं। तो बस थोड़ा सा ख्याल रखें अपनी ज़िंदगी में, अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिएगा, इसको परेशान मत होने दीजिएगा। और दूसरी चीज़ सबसे अहम, आपको पता है कि सेहत के बाद सबसे अहम चीज़ जो होती है वो आपकी इज्जत होती है। हमें उतनी ही अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए जितनी हम अपनी इज्जत पर देते हैं। हर बंदे की यही कोशिश होती है कि उसे दुनिया में एक इज्जतदार मुकाम मिले, हर लोग हर सब किस्म के लोग जो हैं वो उन्हें इज्जत की नज़र से देखें, लेकिन हम ये चीज़ पे फोकस नहीं करते कि हमारी सेहत भी इसके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी होना तो इज्जत अपने आप मिल जाती है। किसी सियाने ने कहा था कि अगर अकलमंद होना चाहते हैं ना तो आपको तकलीफ़ से गुजरना होगा। अगर आप अकलमंद हैं, आपको लगता है कि आप अकलमंद हैं, तो एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी को रिवाइंड करके देखिएगा कि कितने तकलीफ दे लम्हात हैं जिनसे आप गुजरे हैं। और आपको लगता है कि आपकी लाइफ तो परफेक्ट जा रही है, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर थोड़ा सा अकल पर तवज्जो दीजिएगा। आपको पता है कि जो इंसान ज़िंदगी से मोहब्बत और ख़ुशी को निकाल देता है उससे सुकून कभी नहीं मिल सकता। इन तीनों चीज़ों का ना आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, मोहब्बत, खुशी और सुकून। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप ख़ुद को एक मुकम्मल इंसान समझ सकते हैं। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज़ की भी कमी है ना तो आप कभी भी मुकम्मल ज़ात नहीं बन सकते। अब ज़रा सा अपनी ज़ात पर तवज्जो दीजिए, एक सेकेंड अपनी ज़ात पर लगाइए और बताइए क्या मोहब्बत, खुशी और सुकून तीनों चीज़ें आपके पास हैं। और अगर आपको इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी कम लगती है ना तो याद रखिए आप मुकम्मल नहीं हैं, आपको उस चीज़ को भी लेना है, उस चीज़ को हासिल करना है ताकि आप एक मुकम्मल शख्स बन सकें। खैर जी, अच्छी अच्छी बातें तो मैं करता ही रहता हूँ और मुझसे आप बस अच्छी बातों की ही उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि बाकी तो मुझे कुछ आता नहीं है करना। प्रोग्राम का मकसद इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी है, और एंटरटेनमेंट में सबसे पहली और मज़ेदार जो चीज़ आती है वो आता है म्यूज़िक। तो हम शामिल करेंगे एक और खूबसूरत सा ट्रैक उन तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नज़र जो शाम के इन खूबसूरत से ढलते हुए लम्हात में मेरे साथ साथ हैं, और ख़ास तौर पर मेरे अंकल और आंटीज़ उनको प्रोग्राम में शामिल करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम तर लोगों को ये खुशखबरी दूंगा कि मेरे और आपके दर

0: पसंद के गाने उनके लिए शामिल करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी प्यारी सी
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
2: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
2: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
2: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: 97.1 FM ke saath har awaaz ek nayi kahani ka aagaaz.

जी हाँ जनाब, वन सेकेंड वेलकम बैक। आज के लौट के वापस एक छोटी सी प्यारी सी जुनून सी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिस्टिंग फॉर 97.1 FM एंड आल्सो प्रोग्राम का ड्राइव ऑन। और इसमें हम और आप साथ साथ हैं एक रोड ट्रिप पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रोग्राम में मेरे साथ साथ रहेंगे अब से लेकर ठीक प्रोग्राम के अहतमाम तक।

ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे जनाब हम तमाम तरह अंकल और आंटीज के लिए, जो अब मेरा ख्याल है कि उम्र का मैं एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो तमाम तर अंकल और आंटीज जो अब पुराने दौर को मिस करते हैं, पुराने गानों को मिस करते हैं, क्योंकि आज के दौर में पुराने गाने जो हैं वो कोई भी नहीं सुनता, और जो अंकल और आंटीज सुना करते हैं उनको कोई सुनने नहीं देता, उन्हें बेचारियाँ भी नहीं कोई सुनता थे। जी हाँ जी, आज के दौर में हमने अपने बुज़ुर्गों को घर में एक शोपीस की तरफ सिर्फ रख दिया हुआ है। जो सबसे कीमती चीज़ हम उन्हें दे सकते हैं वो वक्त है, और वही हमारे पास नहीं है जो हम उनको दे सकें। बिल्कुल बस हमें ये पता होता है कि ठीक है जी, हमारे घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, बस इतना सा हमें पता है। जिस तरह एक कीमती फर्नीचर को घर के किसी कोने में रख दिया जाता है, उसी तरह से हमने आजकल अपने बुज़ुर्गों को रख दिया हुआ, और ये बहुत बुरी चीज़ है। देखिए, इस उम्र में उन्हें और कुछ भी नहीं आपसे चाहिए, सिर्फ तवज्जो और वक्त चाहिए होता है। अगर आप वही उन्हें नहीं देंगे तो फिर क्या फ़ायदा उनका। अपनी तमाम तर ज़िंदगी उन्होंने आपके नाम कर दी, आपको बड़ा करने में, आपको पालने पोसने में, और आपकी तमाम तर ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने में। आज जब उनको ज़रूरत पड़ती है आपकी, तो आप उन्हें वक्त ही नहीं दे पाते। ठीक है, जनरली सी बात है कि आपके पास बहुत कम वक्त होता है, आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत कम इंसान जो है वो वक्त दे पाता है, लेकिन मजबूरी है, देनी तो पड़ेगी। अगर आप उन्हें वक्त नहीं देंगे तो यकीन करें कि वक्त ख़ुद में से उनको निकाल देगा, और ये फिर बाद में जाके सिर्फ एहसास और पछतावा ही रह जाता है, और कुछ भी आपके पास नहीं रहता। तो बाद में पछतावा लेने से बेहतर है कि अभी वक्त है, उन्हें वक्त दीजिए। और हमारे जितने अंकल आंटी से मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं आपका गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं लेके आ सकता, लेकिन उस गुजरे हुए वक्त की कुछ यादें हैं जिनको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हाँ वेल जनाब, उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सोनू की आवाज़, ये वो सिंगर थे जो हैं, बल्कि अभी भी इनमें से, और ये वो आवाज़ें थी जो आज भी हमारे दिल के किसी न किसी कोने में मौजूद हैं। तो बस इन खूबसूरत से ट्रैक को सुनिए और आंखें बंद कर लीजिए, कुछ पुरानी यादों में चले जाइए। लौट कर वापिस आते हैं इन खूबसूरत सी आवाज़ों के उस पार। रहिएगा मेरे साथ, आई एम योर होस्ट उस्मान खान, एंड यू आर लिसनिंग फिज़ा 97.1 FM, प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव ज़ोन।

ऑल राइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस खूबसूरत सी आवाज़ के उस पार। अगर इसको चलते रहने दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाना, और हम इसको इतना ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल हमारे पास करने के लिए खुद की भी बहुत सी बातें हैं, और अगर हम सिर्फ गाने ही सुनते रहेंगे तो फिर बातें कौन करेगा आपसे। तो मेरे तमाम दर अंकल और आंटीज वापस आ जाइए अपनी मेमोरीज से, अब हम बातचीत भी तो करेंगे ना। खैर जी, उसके साथ साथ वेलकम करेंगे उन तमाम तर लोगों को जिन लोगों ने अभी अभी फजा 97.1 एफएम को ट्यून किया है। सो इस वक्त आप मुझे ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, घर में सुन रहे हैं, ऑफिस में सुन रहे हैं, या जहां कहीं भी आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, नॉटिंघम में हैं या इसके गिर्दोनवा कहीं पर भी मौजूद हैं, आप तमाम तर समातों का बेहद शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के इस वक्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि आप हिस्सा बन चुके हैं तो मुकम्मल तौर पर हिस्सा बनिए ना, यानी कि हमारा साथ दीजिए और अपने होने का एहसास हमें दिलाइए। उसके लिए आप 01157100971 पे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुँच पा रही तो radiofaza.co.uk के थ्रू लाइव ट्रांसमिशन पे, लाइव स्ट्रीमिंग पर मुझे सुन सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से, प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों जगहों पे। एक खूबसूरत से गोल्डन कलर के माइक के साथ आपको यह हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट के थ्रू आप मुझे सुन सकते हैं। रेडियो फजा का ये वादा है कि आपको कभी भी किसी भी वक्त पे बोर नहीं होने देगा। 24 आवर्स जिस टाइम आपका दिल करे आप इसको ट्यून कीजिए और हमारी लाइव प्रोग्राम्स का हिस्सा बन जाइए। ड्राइव कर रहे हैं तो फजा डैप पर आप मुझे ट्यून कर सकते हैं, डैप पर भी हम लोग मौजूद हैं। सुबह जनाब, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बातें कर रहे थे हम इससे पहले कि आपने किस तरह खुद की जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। जनाब कहते हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि हर शख्स एक किताब है, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, आप पढ़ाई वही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं होती, बल्कि इंसान हर लम्हा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मैं हमेशा तमाम तर सुनती समातों से बात कहा करता हूँ कि किताबें आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताती हैं, सिखाती नहीं हैं। सीखना अपने मुआशरे से होता है, तो किताबें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, उन्हें पढ़ा करें और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश किया करें। क्योंकि सियाने लोग कहते हैं ना, किताब आपका बेहतरीन दोस्त है, ये कभी भी आपको ज़िंदगी में तनहा नहीं होने देती। अब ये डिपेंड आप पे करते हैं कि आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। ज़िंदगी एक तल्ख हकीकत है और हमें इस तल्ख हकीकत के साथ साथ चलना पड़ता है। ये देखिए, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है कि ना ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी से हमें मिलती है और ना ही हमारी मर्ज़ी से हमसे छीनी जाती है, लेकिन इसके दौरान जो ड्यूरिंग पीरियड होता है ये हमारे हाथ में होता है। हम जिस तरफ चाहें ज़िंदगी का रुख मोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाए तब भी ये आपके हाथ में, और अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी बेहतरी की तरफ ना जाए तब भी ये आपके अपने हाथ में है। फैसला आपने खुद करना होता है। कभी भी अपनी ज़िंदगी का कलम जो है वो किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिएगा, वगरना वो आपकी ज़िंदगी को अपने मुताबिक लिख देगा, और फिर ये माशरा है, हमें इसमें रहने के लिए इसके असूलों पर अमल करना पड़ता है। कभी आप ये सोचें कि आप इस माशरे में रह के एक अलग लाइन बनाकर अपनी ज़िंदगी जी लेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें इस माशरे में रहने के लिए इसके असूलों पर अमल करना पड़ता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को मज़ीद अच्छे से तलकीन करें कि वो ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेहतर यही है, पहले आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए फिर दूसरों की ज़िंदगी की तरफ जाइएगा। अच्छा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बड़ी अच्छी बातें कर लेता हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे थोड़ा सा हासा भी आ जाता है खुद पर क्योंकि मेरी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो किताबी बातें होती हैं, और अमली ज़िंदगी में इनका अमल दखल जो है वो हमारे अपने चूके हाथ में होता है। वो कहते हैं ना कि आप बेहतरीन मशवरा तभी लोगों को दे सकते हैं जब आप खुद उस पर अमल कर सकें। अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं और आप दूसरों को अच्छी ज़िंदगी के मशवरे देंगे तो कौन आपकी बात पर यकीन करेगा। बेहतर है कि आप पहले अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लीजिए, उसके बाद आप दूसरों की ज़िंदगी पर तवज्जो दें। तवज्जो देनी है, अमल दखल नहीं करना। हमारे समाज में ना, हमारे पास किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि बैठ के आपकी नसीहतें सुनता रहे।
जब कभी कोई आपसे मोहब्बत लेने के लिए आता है तो बाखुदा उसे मोहब्बत दीजिएगा, मोहब्बत सिखाने मत बैठ जाइएगा। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपकी नसीहतें बैठकर सुने। हमारे यहाँ होता क्या है हमारे माशरे में कि जब कभी कोई किसी मुश्किल परेशानी में हमारे पास आता है तो वो हमसे मशवरा मांगता है तो हम उसे लंबे लंबे लेक्चर्स देना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की मिसालें देना शुरू कर देते हैं, फ़लाँ टाइम पर फ़लाँ के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा। भाई उसको नहीं इस चीज़ों से कंसर्न, वो नहीं चाहता कि उसको लंबी लंबी स्टोरी सुनाई जाए, उसको चाहिए मसले का हल। अगर आप उसके मसले का हल नहीं निकाल सकते तो उसे लंबे लंबे लेक्चर्स मत दीजिए, उसका वक्त ज़ाया मत कीजिए। अगर आपके पास उसके मुताबिक कोई जवाब नहीं है तो आपको इतने दानिश्वर नहीं है कि आप उसे लंबे लंबे लेक्चर्स देंगे और वो बड़ी तवज्जो से आपके लेक्चर सुन लेगा। उसके दिमाग में पता नहीं न जाने कितनी जंगें उस वक्त चल रही होती हैं, तो उसको आपकी नसीहतों की नहीं आपके साथ की ज़रूरत होती है। तो बेहतर है कि अगर उसे अच्छा मशवरा दे सकते हैं तो उसे बताइएगा, वरना उसका वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। मुझे आप इस तरह की अच्छी अच्छी बातों की तवक्को सिर्फ आप उस्मान खान से ही रख सकते हैं। अगर तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है जो आपको ऐसी बातें सिखाएगा मेरे ख्याल में, और मैं खुद चूँकि मियाँ मीठू हूँ अपनी मुँह से खुद ही तारीफ करता हूँ अपनी। इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है, मेरी वालिदा ने ना मुझे शुरू से सिखाया था कि पुत्र अपना हर काम खुद किया करना, तो बस इसलिए मैं अपनी तारीफ खुद ही करता हूँ। खैर जी, हमारे तमाम दर वो दोस्त जो इस वक्त मुझे सऊदी अरब या फिर दुबई या किसी भी ऐसे अरब कंट्री से सुन रहे हैं जिनकी अरबी मुझसे ज्यादा अच्छी है, तो लीजिए आपकी नज़र खूबसूरत सा ट्रैक। सो उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत ट्रैक ज़रूर पसंद आएगा। मुझे समझ तो नहीं आएगी लेकिन मैं म्यूज़िक से थोड़ी सी एंटरटेनमेंट ले लूँगा, बाकी अगर आपको समझ आई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये मोहतरमा कह क्या रही हैं। सो जब तक आप ये खूबसूरत सी आवाज़ सुनते हैं तब तक मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लेता हूँ, फिर यही हो सकता है। बेहद शुक्रिया जी आपका फजा 97.1 एफएम को ट्यून करने का। बंदे ने चीज को उस्मान खान कहते हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इस वक्त ड्राइव जोन, जिसमें मेरा और आपका साथ मजीद अभी काफी पड़ा हुआ है। देर किस चीज की है, इंतजार कैसा। अच्छा कीजिएगा, इस आवाज को लौट कर वापस आते हैं।

ये हबीबी लोड करा चुके हैं वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फॉर द नाइट 7.01 एफएम एंड आल्सो डैब। एक बड़ा प्यारा सा अरेबिक म्यूजिक आपने एंजॉय किया और मुझे उम्मीद है कि ये मेरे अलावा अगर किसी को समझ आ भी गया है तो बस मुझे भी समझा दीजिएगा। लेकिन खैर जी, हमारे अरब में रहने वाले तमाम तर परदेसी भाई जो हैं उनको तो यकीनन इसकी समझ आ गई होगी। अल्फाज का तो मुझे नहीं पता लेकिन म्यूजिक बड़ा मजे का था जिसको मैंने इंजॉय किया। मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसको इंजॉय किया होगा। अब थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे और बात कर रहे थे हम अगर आपकी ज़िंदगी के हवाले से और ख़ास तौर पर बात कर रहे थे उन लोगों के हवाले से जो आपके लिए आपसे कोई मशवरा मांगने आते हैं और आप उन्हें लंबे लंबे लेक्चर्स दे देते हैं तो आपने इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करना है। आपने लोगों को सिर्फ मशवरे का हल बताना है, जो भी उनका मसला चल रहा है उसका हल बताना है, ना कि लंबे लंबे लेक्चर्स देने हैं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

लीजिए जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक करते हैं तमाम तर सुनती हुई खूबसूरत समातों को जिन्होंने फजा 97.1 एफएम की ट्यून पे चूज कर रखा है हमारा लास्ट सेगमेंट। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लास्ट सेगमेंट में ऐसा पंजाबी विच गल करिए अपने तमाम तर सिख भरावां वास्ते या उन्होंने तमाम तर भरावां भैनों वास्ते जिहड़े सानूं पंजाबी विच सुनना पसंद करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी पंजाबी जिहड़ी उह एडी चंगी कोई नहीं है कि मैं तुहाडे नाल पूरियां गल्लां ही पंजाबी विच करां। कोशिश करना जे कोई लत्त बां पंजाबी दी टुट भी जाए तो उहदे वास्ते पेशगी माजरत, लेकिन मैं कोशिश करना। देखो जी, यही सब तो वड्डी गल हुंदी कि तुसीं किसी भी काम नूं करन दी कोशिश करो। सही गलत ते अग्गे दी गल है ना, बंदा कोशिश ते करे ना। जे तुसीं कोशिश ही नहीं करोगे तो तुसीं मंजिल तक किवें पहुँचोगे। मेरी कोशिश ये हुंदी कि कम से कम मैं अपने तमाम तर वीरां नूं, चाहे उन्हां दा ताल्लुक इंडिया तो है, चाहे उन्हां दा ताल्लुक पाकिस्तान तो है, चाहे उन्हां दा ताल्लुक किसी भी कंट्री तो है, किसी भी कंट्री तो सारे साडे भैन भरा ने, ते असां सारिआं नूं नाल नाल लै के चलीए। तो मेरे को ना आखिरी कुछ मिनट ही रह गए ने, क्योंकि मैं तुहानू पता है कि अक्सर जल्दी भज जाना हुंदा वा ना, तो मेरी कोशिश यही होंदी है कि मैं अपने सारे वीरां नूं नाल नाल लै के टुरां। तो पंजाबी का बड़ा खूबसूरत जिहा मैशअप मेरे को मौजूद है, तो असां इसे मैशअप नूं थोड़ा जिहा अगे वधावांगे, नाल नाल गप्पां वी इहदे ते ही मारांगे। अच्छा, कोई दुखी गाने ने, कोई सुखी गाने ने, सारे मिक्सअप गाने ने चुके दे विच, ते तुसां मेरियां गल्लां ते फोकस करियो, ठीक है। अज के प्रोग्राम में आप गल कर रहे हैं जनाब कि कोशिश करन तो बगैर मसले का हल कोई नहीं निकल सकता, तो असी किसी भी मंजिल पर पहुँचने उस वास्ते रास्ते का इंतखाब करना थोड़े वास्ते बड़ा जरूरी होगा। अच्छा, मेरी पंजाबी में फिर दस दें कमज़ोर है, तो बहुत सारे विच उर्दू के इंग्लिश के लफ्ज़ भी आएंगे, तो मैनेज कर लिया जे। तो किसी भी मंजिल तो पहुँचने तो पहले तुम्हें रस्ते का इंतखाब करना बड़ा जरूरी होंगे। जो थोड़े को सही रस्ते का इंतखाब नहीं होगा तो कभी भी अपनी मर्जी की मंजिल पर नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन गल हो कि मंजिल तक पहुँचने तो पहले रस्ते का इंतखाब करना भी जरूरी होंगे, तो इस रस्ते तक टुरन तो पहले वो कोशिश करनी भी जरूरी है। जिन्ना तक बंदा अपने जेहन के एक पूरी स्टोरी क्रिएट नहीं कर लेंदा ना, उन्नी देर तक कोई फैसला नहीं कर पाता। तो सब तो पहले तो तुसी सोचना कि तुसी करना की है, उस तो बाद फिर जो करना बस कर गुजरो। ये ना सोचो कि दुनिया की आखेगी, घर दे की आखनगे, रिश्तेदार की आखनगे, और छोड़ो जनाब दुनिया एंड दे बस यही याद है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्तगफिरुल्लाह। मैं केड़ियां गल्लां, तू केड़ियां गल्लां ते टुर जाना। कदी कदार मैं हिसाब लाया कि मैं जिवें कहना होना ना कि मेरे ते गजनी दे विच फर्क सिर्फ वालां दा ही रह गया, उस तरह मैनूं लगदा कि मैं कदी कदार ना बहुत अगे तक टुर जाना। खैर जी, कोई गल नहीं, हंसी मजाक अपनी जगह पर, लेकिन उसके नाल नाल मैं तुहानूं भी दसा कि जनाब मेरे प्रोग्राम का मकसद जिहड़ा हुंदा सिर्फ तुहानूं हसाना हुंदा, तुहाडा थोड़ा जिहा वेला चंगा कढ़ाना हुंदा, तो इस तों अलावा मैं कोई होर काम नहीं जे करदा। ना तो मैं फकियां वेचना, ना मैं रंग गोरा करन वाली क्रीम देना, ते ना मैं ही मशवरे कोई देना। मैं जो करना बस इत्थे ही करना, तो अपना छोटा वीर समझ के जे किसी की कोई दिल आजारी हो जाएगी होवे मेरे इस प्रोग्राम दे विच, ते कर लो जो करना जे। नहीं जी नहीं, तुसी माजरत, मैं थोड़े को पहले मांग लेना पेशगी माजरत जे मेरे वजह तो, मेरी किसी गल की वजह थोड़ी दिल आजारी हुई है। तो बाकी फिर भैन भरावान में गलत तो चलदी ही रहिंदियां ना। बंदा सिर ते आके खलो गया जी, हुण बंदा चाहुंदा है कि किस टाइम उठनगे, तो ये गलत फहमी है कि असीं उठांगे। 36 मिनट होए ने पाए। अवैल जनाब हमारे साथ इस वक्त ना स्टूडियो में एक नहीं बल्कि दो दो खूबसूरत सी पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं, और एक तो अपनी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट करते करते रह गए हैं। एक से है, आज इनका पहला दिन है और अभी वो लर्निंग में है, और वो यकीनन जो भी सीखेंगे जब मेरे को सीखेंगे तो फिर वाली सीखेंगे। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि चाहे जितना भी वक्त मैं किसी को दे सकूं वो अच्छा हो, और मेरे से दूर जाने के बाद भी बस वो मेरे ही ख्वाबों ख्यालों में खोए रहे। एडी मैच मेरी आ रहा है। वैसे जनाब देखिए, आपकी याद के लिए ये बड़ी चीज़ होती है कि आपके जाने के बाद भी कोई आपको अपनी यादों में याद रखे, आपका जिक्र जो है उसके जहन में रहे, ये बड़ी बात होती है, और वो पॉजिटिव हो नेगेटिव नहीं। सो फाइनली जी, अब आपसे इजाज़त चाहने का वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि मैं कभी भी मुकम्मल वक्त पे नहीं जाता, हमेशा पहले भज जाता हूं, तो आज भी मैं जल्दी भजने के बिल्कुल मूड में हूं।
लेकिन आज के प्रोग्राम में जितना साथ रहा खूब रहा और अच्छा रहा, इस साथ को मजीद खूबसूरत आप लोगों ने अपना साथ देकर बनाया, बेहद शुक्रिया आपका। आपके मैसेज प्रोग्राम में नहीं शामिल कर पाया उसके लिए माजरत, लेकिन कल के प्रोग्राम में मैं आपके आज वाले मैसेजेस भी शामिल कर लूँगा और कल जो नए ताज़े टिकटे मैसेज आएंगे ना उनको भी शामिल कर लूँगा। सो फिलहाल अपने मेज़बान उस्मान खान को इस बात के साथ इजाज़त दीजिएगा कि खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वहाँ से प्यार ले लीजिएगा जहाँ पर प्यार बैठ रहे, और बाखुदा वहाँ पर प्यार दे दीजिएगा जहाँ पर प्यार की ज़रूरत है। जिंदगी और सांसों में वफा की तो कल सेम प्लेटफॉर्म सेम टाइम पे आपसे फिर से होगी मुलाकात। अपने मेज़बान उस्मान खान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपका, मेरा और सबका अल्लाह निगेबान।

0: जहां लजीज शनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा।
0: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
0: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
0: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
2: To stay contact 07440016816 address 35 Lenton Boulevard Lenton Nottingham NG72ET
0: पिशावरी डेरा।
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
0: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
0: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
0: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
2: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
0: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
0: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
4: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।

0: Hit music.
1: Back to back.
2: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
3: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 एफएम, आई लव इट.
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
3: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए.
4: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया.
3: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन.
4: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो.
3: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी. अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL. अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए. जी, एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम. बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779. एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन. हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस. Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
6: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
7: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
6: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
7: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
6: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
7: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
6: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS.
7: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
6: टेस्ट भी वाइब भी. हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
10: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम लेकर आया आपके लिए नादरा सर्जरी। अगर आपका नाइक कॉप एक्सपायर होने को है या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए ना चैपल हाउस नॉयल स्ट्रीट नॉटिंघम NG7680 ऑन संडे 2nd August 2026 फ्रॉम 10 AM to 2 PM। मजीद मालूम के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट pakistanforum.co.uk। टू बुक एन अपॉइंटमेंट प्लीज कॉल 07802988615। Only a limited number of slots available.
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen,

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM. आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: This is a public service announcement.
7: The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazza 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल है।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी वो भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती है, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई,

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: पिशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कुक।

0: प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
0: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Radio Fazza, for all your information, communication and entertainment needs.
9: Radio Fazza.